0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

का। सो वेलकम बैक, इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप आगे देखते हैं कि पीछे? ऑफ कोर्स आगे देखते हैं ना। यू नो, जिस तरह से गाड़ी चलाते वक्त आगे देखना जरूरी होता है, उसी तरह से हमारी लाइफ में भी हमारा आने वाला पल, आने वाला कल, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। गाड़ी में रियर व्यू तो होता है, लेकिन आगे वाला शीशा कितना बड़ा होता है ताकि आपको आगे की क्लियरिटी अच्छी तरह दिखाई दे। हाँ, रेयर व्यू इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि एक नज़र पीछे भी रहे और वो पीछे वाली गलतियाँ जो है, जो पास्ट की गलतियाँ हैं, वो आपके आज में या फिर फ्यूचर में रिपीट ना हो, इसलिए ज़रूरी है रेयर व्यू का होना। लेकिन फ्रंट व्यू के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एकदम क्लियर हो, और इसीलिए आपकी गाड़ी का शीशा आगे बड़ा होता है। इसी तरह से जिस तरह से गाड़ी चलाते हुए आगे फोकस करते हैं ना, उसी तरह से लाइफ में भी सिर्फ और सिर्फ आगे फोकस कीजिए। पीछे जितना देखेंगे उतना परेशान रहेंगे, बस नजर रखिए ताकि गलतियां रिपीट ना हो। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। जब बहुत सारे एफर्ट्स डाल दिए, बहुत सारी परवाह कर ली, लेकिन उसके बाद भी लोगों को आपकी वैल्यू ना लगे, आपकी रिस्पेक्ट ना वो फील कर पाए, या फिर आपकी प्रेजेंस उन्हें फील ना हो, तो अपने आप को एब्सेंट कर लीजिए। ठीक नमक की तरह, नमक अगर किसी खाने से मिस हो जाता है तो फिर खाने वाले को खुद अंदाजा हो जाता है कि खाने में कुछ बहुत भयंकर चीज मिस है, है ना। और कितना भी टेस्ट वाला खाना हो, टेस्टलेस हो जाता है। ठीक उसी तरह से शायद जो आपके एफर्ट्स नहीं कर पाए वो आपकी एब्सेंस कर दे। कभी कभी रिश्तों से गायब हो जाना भी सामने वाले को ये समझा देता है कि उसकी जिंदगी में आपकी क्या वैल्यू है। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644 35 पर। याद रहे 04006444 35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

कर लेते हैं आदत की। हाँ, यूं तो हमारी बहुत सारी आदतें होती हैं, लेकिन क्या आपको कभी एक ऐसी आदत पड़ी है, एक ऐसे इंसान की आदत कि सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल उसका आए, रात को जब सोने चले तो आखिरी याद जो आंखें बंद होने से पहले आए वो याद भी उसकी हो, सुबह उठते ही फोन पर सबसे पहले उसका मैसेज चेक किया जाए और रात को उससे बातें करते हुए दिन का हाल बताते हुए आपकी शाम का, आपकी रात का जो है वो अंत हो। एक ऐसा इंसान जो जिंदगी में आपका ऐसा सुकून हो कि जब भी कुछ लाइफ में अच्छा हो आप सबसे पहले उसके पास पहुंच जाएं, और अगर दिन अच्छा ना गुजरे, लाइफ में कुछ बुरा हो, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो, तो आप सबसे पहले उसके साथ उस बात को शेयर करें और खुद को हल्का करें, जिसके साथ होने पर आपको कभी ये एहसास ना हो कि आप अकेले हैं। भले ही वो आपसे दूर है, लेकिन वो अकेलापन जो है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा ना बने। है कोई ऐसा जिंदगी में? अगर आपकी जिंदगी में भी कोई एक ऐसा है, आपका यार, आपका साथी, तो बस उसी के नाम है ये अगला ट्रैक, इसे सुनेंगे और फिलहाल इस सफर में भी आगे बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ, यू ही एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस।

बात करते हैं फीलिंग्स और ईगो के बीच की। फीलिंग्स और ईगो, इन दोनों के बीच क्या कोई रिश्ता है? भाई डेफिनेटली इन दोनों के बीच रिश्ता तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिश्ते खत्म करने का काम करते हैं। ये दोनों अगर साथ हो जाएं तो कितना भी गहरा, कितना भी पुराना रिश्ता हो, वो मिट्टी में मिल जाता है। फीलिंग्स एक रिश्ते को बनाती हैं, वहीं ईगो उस रिश्ते को मिटाने का काम करता है। तो भला ये दोनों साथ कैसे चल सकते हैं? इसीलिए अगर आपके दिल में किसी के लिए जज्बात हैं, किसी के लिए फीलिंग्स हैं, तो ईगो को दूर रखिए, क्योंकि जहां ईगो आया ना, वो सबसे पहले उस इंसान के लिए आपकी फीलिंग्स को खत्म करता है। हमेशा खुद को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर दिखाता है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं जब आप ईगो में होते हैं। सामने वाले की ना तो परवाह, ना उसकी फीलिंग्स की परवाह, और ना ही उस ईगो में जब आप होते हैं आपको उस रिश्ते की परवाह रहती है, जो शायद आपके लिए भी, आपकी नजर में भी आपका सबसे कीमती और खूबसूरत रिश्ता है। यू नो, ईगो में आने के बाद इंसान बहुत सारी गलतियां क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि वो गलत है, बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और ये एक्सेप्टेंस जो है, जो अपनी गलतियों को छुपाने की उसकी आदत पड़ जाती है, यही रिश्ते का खात्मा करने की वजह भी बन जाती है। इसलिए अगर रिश्ता है, फीलिंग्स हैं, तो ईगो को दूर रखिए, वरना वही ईगो उस फीलिंग्स को ही खत्म कर देगा जो किसी के लिए बेशुमार हैं आपके दिल में। स्टे ट्यून, रेडियो प्रिस्मानी सताक्षी के साथ, एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस। आइए आगे बढ़ते हैं इस अगले ट्रैक के साथ।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड.
2: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.

अक्सर मैंने कुछ कपल्स को ये कहते सुना है, कुछ लोगों को ये कहते सुना है कि भाई सामने वाला हमसे प्यार दिखाता नहीं है, और सामने वाले की प्रॉब्लम ये है कि भाई प्यार करते तो है, अब दिखाना क्या। देखिए, कई बारी ना चीजें दिखानी जतानी बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि जब आप जताते हैं तब सामने वाले को ये एहसास होता है कि वाकई आप उससे प्यार करते हैं। ये जो छुप छुप के चीजें होती हैं ना, कि मोहब्बत की फीलिंग्स हैं, है ना, तो ये फीलिंग्स जो है ये अगर आप दिखाएंगे नहीं तो सामने वाले को पता कैसे चलेगी। बहुत सारी बातें बतानी भी जरूरी होती है, सिर्फ फील करने से या प्रेजेंट ना करने से बात नहीं बनती है, क्योंकि आज का दौर वो दौर भी है जब आप जब तक शो नहीं करेंगे ना कि भाई हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, या आप कहेंगे नहीं सामने वाले से, उसको लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि वही एक तरफा ये रिश्ता निभा रहा है। तो इसके पहले कि इंसान एक रिश्ते में थकने लगे, उसे जरूर टाइम टू टाइम ये बताते रहिए कि उसकी भी आपकी जिंदगी में अहमियत है। रोज आई लव यू बोलना जरूरी नहीं है, छोटी छोटी सी चीजें करने से भी ये बात जो है ये आप कह सकते हैं सामने वाले से कि हाँ आपको उसकी परवाह है। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए ठाकुर साहब, सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी।

वेल फ्रेंड्स, ये था जी ठापन्स पर सताक्षी का आपके साथ एक और प्यार भरा और सुबह का बेहतरीन साथ। भाई मैंने तो एंजॉय किया, आई होप कि आपने भी आज के सफर को जरूर पसंद किया होगा, एंजॉय किया होगा और आज के इस सफर ने आपकी जर्नी में भी कुछ बेहतरीन बातें ऐड की होंगी। तो बस कल इन्हीं बातों के साथ मेरे आपके साथ के साथ फिर से होती है मुलाकात। आज निकल पड़ी अपने दिन को जीने के लिए। हैव अ ग्रेट डे, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

अमरीका के वाशिंगटन सूबे में एक बड़ा फौजी जहाज हादसा सामने आया जिथे नियमित सिखलाई उड़ान दौरान अमरीकी मरीन कोरपस का एक F-18 हार्नेट लड़ाकू जहाज हादसाग्रस्त हो गया। राहत की गल यह है कि पायलट समा रहे जहाज चो बाहर निकलने विच सफल रहा ते उस नू सिर्फ मामूली सट्टा लगिया। रिपोर्ट अनुसार जहाज कैलिफोर्निया स्थित मरीन कोर्ट एयर स्टेशन मीरामार नाल संबंधित सी ते वाशिंगटन राज दी रिमरॉक झील खेतर दे कोल हादसाग्रस्त होया। ए जहाज मरीन एयरक्राफ्ट ग्रुप 11 दे अधीन संचालित कीता जा रहा सी। रुख करदे पंजाब दे वल जिथे भाजपा दे प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने पंच तीर्थ यात्रा दियां लई बसां नूं हरी झंडी दित्ती। इस मौके प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं पंजाब दे लोक इस कड़ी उन्होंने कहा है कि कड़ी दी उडीक कर रहे सन कि सूबे विच कदों भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवेगी। भाजपा दे एसी मोर्चे वल्लों 12 साल पूरे होण मौके पंच तीर्थ यात्रा कड्डी जा रही है। उन्होंने कहा है कि तीर्थ यात्रा की यह योजना डॉ B.R. अंबेडकर जी के जीवन नाल जुड़ी हुई है। उधर गल करदे आं सोशल मीडिया दी, तां सोशल मीडिया ते रीलां ते वीडियोज़ देख के अक्सर लोक खतरियां दे खिलाड़ी बनन लई निकल पैंदे हन जो कि कई बार उन्हां लई जानलेवा साबित हुंदा है। असीं अजिहा इसलई कह रहे हां क्योंकि ताज़ा मामला ब्राज़ील तों सामने आया जिथे एक एडवेंचर कंपनी दी घोर लापरवाही कारण 24 साला मुठियार दी बंजी जंपिंग दौरान मौत हो गई है। दरअसल एडवेंचर कंपनी दी वड्डी लापरवाही कारण एक कुड़ी बिना बंजी कार्ड बन्ने ही 35 मीटर दी उचाई तों हेठां कुद गई अते उसकी मौके ते ही दर्दनाक मौत हो गई। इस खौफनाक हादसे की वीडियो कैमरे विच कैद हो गई जिस तों बाद पुलिस ने मौके तो भज रहे कंपनी के स्टाफ नूं हिरासत विच लै लिया। यह हादसा साओ पॉलो राज्य दे लिमेरेना ते कोर्डियोरोपोल शहर नूं जोड़न वाले पोंटे डो एस के लोटो पुल ते होया। ए पुल हाल ही दे दिनां विच एडवेंचर दे शौकीनां ते सैलानियां लई एक पसंदीदा स्पॉट बन गया सी, पर इस जगह ते सरकार जां किसी अधिकारित संस्था दी कोई निगरानी या सुरक्षा नियम लागू नहीं सन। स्थानक मीडिया रिपोर्टां अनुसार मृतका मारफिया एडुआर्डा रोजिट जी फ्रिटास ने इस खतरनाक बंजी जंप ते उसकी वीडियो शूट करवाउण लई एंट्रे कोडास नाम की एक प्राइवेट कंपनी नू करीब $290 यानी कि लगभग 24,500 रुपए दिते सन। ओ इस वीडियो नू अपनी यादां विच समेटना चाहुंदी सी। चश्मदीद मुताबिक मुठियार तो पहला 3 होर लोकां ने उथे जंप लगाया सी जो सुरक्षित रहे, पर जिवें ही कुड़ी दी वारी आई उथे मौजूद क्रू मैंबरां ने सुरक्षा नियमां नू पूरी तरह छिके टंग दिता। क्रू मैंबर मुठियार नू कुदन दा इशारा करन या हेठां तसण तो तकण तो पहला ये चेक करना भूल गए कि उसकी सुरक्षा रस्सी ठीक तरह बनी है या नहीं। जिवें ही मुठियार ने पुल तो हेठा छाल मारी उथे मौजूद लोगों नू तुरंत पता लग गया कि उसके पैरां या शरीर नाल कोई रस्सी जुड़ी हुई नहीं सी। कुड़ी सीधी 35 मीटर यानी कि करीब 115 फुट हेठा जा डिगी। हादसे तो बाद उथे मौजूद कर्मचारियों के हथ पैर फुल गए। उत्थे मौजूद लोगों ने दस्या कि गलती का एहसास हुंदे ही मुलजम इंस्ट्रक्टर अते स्टाफ उत्थों भज्जण दी फिराक विच सी, पर उन्हां दे भज्जण तों पहलां ही स्थानक पुलिस ने उसनूं घेर लिया। दस्या जा रहा है कि इस मामले विच हुण तक 6 लोगों नूं गिरफ्तार किया जा चुक्या है। ਤਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ biswani@biswani.com। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਬਿਸਵਾਨੀ 107.1 FM। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। आज बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो दसवाणी 101.1 FM ते जी आर चे संदेश शौलक दे नाल बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की गाना है, तुसी जुड़ना है साडे नाल, तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो दसवाणी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, ते दसवाणी @dasvani.com साडी ईमेल आई डी है। जरिया जेड़ा तुहानू चंगा लगता है तुसी ओह अपना सकते हो, पर साडे नाल देखो गल्लां बातां जरूर करनियां ने, तां फटाफट दे नाल तुसी अपना फोन चुको ते साडे नाल जुड़ना शुरू कर दो। ते मैं तां तुहाडे नाल जुड़ी ही रहना, गल्लां बातां इसे तरीके दे नाल असी करदे ही रहना, बस तुसी जुड़ना बिलकुल भी ना भुलो। तुसी जुड़ो, फोन चुको, ते मैं हुणे वापस आउंदी हां। उहनां समां इहनां सोहणे सोहणे गीतां नूं तुसी इंजॉय करो।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला, दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: तेरे वर्गा आशिक वेखिया न तेरे वर्गी आशिकी।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

देखो मूवीज की हमेशा गल करते हुंदे आ क्योंकि मैं चाहनी हुंदी आ कि तुहाडा जिहड़ा हर टाइम हैगा ना बेशक वीकेंड होवे ते बेशक वीकडेज होण जदों भी तुसीं तुहाडा मूड ऑफ होवे कुछ स्पैशल करना होवे तां कुछ देखण लई कंटेंट लभ रहे होवे तां मैं तुहाडी हैल्प करां तां अज मैं उही काम करूंगी। देखो जेकर तुहानूं वी शार्क वर्गियां सस्पेंस थ्रिलर पसंद आउंदियां हैगियां ने ना तां अज मैं तुहाडे लई लैके आई हां अजिहा ही शार्क मूवीज दी लिस्ट जिन्हां तुसीं घरे बैठे हो ओटीटी ते देख सकते हो इंजॉय कर सकते हैं उन्हां नूं ते जिस विच सस्पेंस थ्रिलर दे नाल नाल मिस्ट्री भी बहुत वधिया है की है सच्चियां घटनावां ते आधारित भी हैगियां ने कुछ कु सारियां ने कुछ कु ते दसां तुहानूं इन्हां बारे दसदी आं पर पहला सुनो एक गीत।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करे प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 FM ते जी आर छे संदेश चौलक दे नाल सी बने होए। इस लिस्ट दे विच यानी कि शार्क मूवीज दी लिस्ट दे विच सब तो पहला नाम जेड़ी फिल्म दा आंदा हैगा है वो है जी थ्रैश। थ्रैश हैगी है जेड़ी ए फिल्म ना समंदर किनारे बसे एक अजिहे शहर की कहानी है जिथे भयंकर तूफान आता है जिस दे बारे तुसी सोच भी नहीं सकते। हड़ आ जाता है हड़ दे पानी दे नाल शहर दे अंदर खूंखार शार्क भी वड़ जांदियां हैगियां ने। इस तो बाद शुरू हुंदा है असल कहानी अगर असल रोमांच की कहानी ते जिवें तुहानू हुणे सारा कुछ दसता तो तुहाडा सस्पेंस हैगा जिहड़ा बिल्कुल खत्म हो जाऊगा। इस लई तुसी थ्रैश जरूर देखो। हुण तुसी सोच होंगे कि इहनू असी किथे देखिए, तां इस मूवी नू तुसी यानी कि थ्रैश नू असी देख सकते हैं क्यों नैटफ्लिक्स ते।

0: Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria.
1: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999. ओपन 7 डेज. फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.

हांजी आयनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 FM ते जी आर जे संदेश अलग दिन से बने हुए। अगला जिहड़ा हैगा नाम इस लिस्ट विच ओ हैगा जी अंडर पैरिस। अंडर पैरिस हैगी है जिहड़ी ए 2004 दी फिल्म हैगी है, ए भी नैटफलिक्स दी ही हैगी है। 2004 विच आई सी नैटफलिक्स से। इस फिल्म ने धूम ही मचा दी सी आउंदे सार, क्योंकि कहानी बहुत खास है। कहानी की गल करिए पैरिस दी सीन नदी विच जद एक विशाल शाख नजर आउंदी है तो पूरे शहर विच हड़कंप मच जांदा है। किवें कई बार इरादे सही होण दे बाद भी वैज्ञानिक राजनीति की वजह नाल हार जांदे ने, ए गल ना इस फिल्म दे विच बाखूबी दिखाई गई है। तो तुसी इस नूं एक बार बिंज वॉच जरूर करो, क्योंकि बहुत ज्यादा सोहनी फिल्म है।

फायर एंट तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 FM ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल से बने हुए। अगला जेड़ा नाम है गा इस लिस्ट विच वो है जी द मैग। 2018 विच आई सी फिल्म पर एनू तुसी नेटफ्लिक्स दे नाल नाल किते होर भी देख सकते हो। वो है जी जियो सिनेमा ते नेटफ्लिक्स ने मिलके इस ते आई सी। ए फिल्म हुण किस बारे ओ तां दस दिनी आ। तां ए फिल्म एक विशालकाय प्राचीन शाक, विशालकाय यानी कि बहुत ज्यादा वड्डी बहुत पुरानी शाक मेगालोडोन दे इर्द गिर्द घूमती है, जिस नूं लुप्त मन्निया जांदा सी पर कुछ रोमांचक ते थ्रिलर नाल ना लब्रेज देखना देखना हैगा है तां ए फिल्म तुहाडे लई बहुत खास है की है, क्योंकि इस दे विच ओ कुछ दिखाया गया जिस नूं तुसी सोच भी नहीं सकते जिस दे बारे बहुत ज्यादा। बाकी तुसी जे इसदा गूगल करके दा पोस्टर ही देख लोगे ना तां ही तुसी हैरान हो जाना है, तां जरूर देखियो एक बार।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents
1: today. भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: OMSOG, caring with dignity.
0: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM आर जी संदेश अलग दिन आप सुपने हुए। अगला नाम केड़ा है इस लिस्ट दे विच, ता अगला नाम है जी द रीफ आई सी 2010 दे विच, ता बहुत शानदार फिल्म है। कहानी मैं तुहानू पहला दस दिनी है, ता कहानी दी जे गल करिए ना तो आस्ट्रेलिया दे समुंदर विच एक किश्ती है जिहड़ी पलटन तो बाद ना दोस्तां दा एक ग्रुप गहरे पानी विच फस जांदा है। उन्हां नू किनारे तक पहुंचण दे लई तैरना पैंदा है, पर एक विशाल शार्क उन्हां दा पिछा शुरू कर दिंदी है। ते इह फिल्म इसे दे इर्द गिर्द घूमदी है, किवें शार्क तो बचदे ने, कौन बचता है कौन नहीं बचता, इह सब कुछ तुहानूं इस फिल्म दे विच देखण नूं मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। इस नूं तुसीं नैटफ्लिक्स ते नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इसलिए तुहानूं देखना पैणा है एमाजोन प्राइम वीडियो।

जी आयो जी जी आयो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो पर सोनी वंसरो आरएम ते जी आज संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए हो। अगला नाम है जी ओपन वाटर 2003 दे विच आई सी। ए सच्ची घटना ते आधारित फिल्म है कि है एक कहा जाता है गा जी मैं तुहानू स्टार्टिंग दे विच कहा सी ना कि कुछ कु फिल्मा सच्चियां घटनावां ते आधारित है ते उहनां दे विचों एक है। तां हुण जे मैं कहानी दी गल करां ना तां कहानी एक कपल दी है कि एक कपल ना

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: तेरे वर्गा आशिक वेखिया न तेरे वर्गी आशिकी।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.
6: कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
7: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
6: अरे वाह, इनका पता बताना।
7: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
8: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
9: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
8: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
9: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
8: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वनसर वाले ते चार चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। इस लिस्ट दे विच अगला नाम केड़ा है ता अगला नाम है गया जी द शैलो। 2016 विच आई सी फिल्म, बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा सोहनी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो इसकी कहानी मैं तुम दस दिनी है। कहानी विच ना एक कुड़ी तट तो कुछ ही दूरी ते बनी एक चट्टान ते फस जाती है। उसके होर किनारे दे विचकार एक विशाल शाक पैरा देरी हुंदी है। एक छोटी जी दूरी नू पार करना एक रोमांच नाल परी कहानी नू जन्म दिंदा हैगा। ते यही तो इसकी कहानी है कि वह कुड़ी किवें पार करूगी, क्योंकि उत्थे तां शार्क है की है। ये कहानी जे तुसीं देखनी है कि किवें की कुछ होगा, तो इसके लिए तुहानूं नैटफलिक्स ते जरूर जाना पैना। यह हॉलीवुड फिल्म हैगी है, प्राइम वीडियो ते नैटफ्लिक्स दोनों ते तुसीं इसनूं इंजॉय कर सकते हो।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Priya, next month mama ka birthday hai. Soch rahi hoon unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge. Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka. अच्छा वो क्या? अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
2: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन AU.LotusFX.com ऐप आज ही विजिट करें.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
6: Tune Ohms Org Assisted Living ke baare mein suna hai? Gurugram mein hai. Professional senior living, 24/7 nursing aur doctors ke strong tie-ups ke saath. Fortis, Medanta, CK Birla, Artemis, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
5: Seriously? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
6: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance. Owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

सिर तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारे खाते में सारी

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

योगी से जो परसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

सामने बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर्शिनिका के साथ। और आप से हो? जी हाँ, हैप्पी आप सबको। काम वाला बट अच्छे से पूरा करना है, गोल्स को अचीव करना है और अपने लिए उस लाइफ को अचीव करना है जिसके सपने आप देखते हैं, जो आपको इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे दिखती है ना कि ओके वहां पर लोग घूम रहे हैं, दुनिया के किसी डिफरेंट कोने में लोग घूम रहे हैं, डिफरेंट चीजें खा रहे हैं और खूबसूरत नजारों को देख रहे हैं। सो लेट्स बी रियल, ये सारी चीजें करने के लिए ऐप करना पड़ेगा और पैसे भी कमाने पड़ेंगे और पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ेगा और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अच्छे से काम कीजिए और फिर उसके बाद जो है वो सोचिए कि आपको पे कहां जाना है। सो अच्छे से सुकून का मजा भी तब आता है जब आप मेहनत करते हो। मेहनत के बाद का जो मजा है ना, मेहनत के बाद जो रेस्ट लेने का मजा है वो डिफरेंट है। नींद सुकून की आती है, अच्छी आती है और वो वैसे नहीं आ सकती। सो आइए करते हैं मेहनत लेकिन अच्छे से। जी हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ अपने काम से मोहब्बत कीजिए और फिर यही है सबसे। इसके साथ अब आइए जरा करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। और प्रोग्राम की शुरुआत आपको पता ही है कैसे होती है, कैसे होती है? ऑफ कोर्स हेल्दी रिचुअल के साथ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करेंगे। डीप ब्रेथ एक्सरसाइज में लंबे गहरी सांस अच्छा फील हो रहा है, काफी अच्छा फील हो रहा है, इम्पैक्ट बहुत अच्छा फील होने वाला है। तो आइए बिना देर किए करते हैं शुरुआत प्रोग्राम के एक बढ़िया से गाने के साथ जो कि जबरदस्त है, मजेदार है और साथ में आपको दोस्ताना पिक्चर की याद दिलवाने वाला है क्योंकि उस ही मूवी का ये गाना है।

जी दोस्तों, ये खूबसूरत गानों का सफर तो शुरू हो गया है, लेकिन अब इस सफर को आगे बढ़ाने के साथ साथ हमें आपको मौसम का हालचाल भी बताना है। अभी आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा, वहीं अगर अभी की बात तो 21.6 डिग्री सेल्सियस के करीब है टेम्परेचर, बट आपको फील हो रहा है 20.3 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, दिन के टेम्परेचर की बात, वहीं रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे तापमान में। और साथ में मैं आपको बता दूं कि 50% चांसेस यहां बारिश के बताए हुए थे, जो कि अगेन मुझे दिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 बजे तक, उसके बाद जो है वो मुझे बारिश के चांसेस यहां पर इतने नहीं दिख रहे हैं। और वहीं अगर वेडनेसडे की बात की जाए तो 20% चांसेस हैं 23 डिग्री सेल्सियस के साथ। जी हाँ, थर्सडे को भी 10% चांसेस है विद 23 डिग्री सेल्सियस, जो कि ना के बराबर है अगेन। तो अगले 3 दिन आपको राहत मिल सकती है बारिश से, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब थोड़ी भी बारिश जो है वो आपको नहीं मिलेगी, बहुत थोड़ी। कहीं कहीं ब्रिस्बेन नॉर्थ में अगर देखने को मिले तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन एज सच मुझे नहीं दिख रहा है। ऑल द बादलों वाली सिचुएशन रहेगी, क्लाउडी रहेगी सिचुएशन, सूरज उतने अच्छे से नहीं निकलने वाला, बीच बीच में बादल रहने वाले हैं, धूप आपको मिलेगी लेकिन बादल भी रहेंगे आज, और ये मैं देख पा रही हूँ। वहीं आज की एयर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो वो है एकदम मजेदार। जी हाँ, तो ये है मौसम का हाल जो कि है मजेदार, और मैं कहती हूँ कि मौसम के हालचाल के साथ आप भी अपना हालचाल बढ़िया कर लीजिए, और अगर नहीं कर पा रहे तो हमारी हेल्प ले लीजिए, जो कि हम अपने प्रोग्राम के थ्रू आपकी करते हैं, मजेदार गाने, मजेदार बातें। तो आइए एक और मजेदार सा गाना आपको यहाँ पर हम सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
3: Fire ants, tuhade ilake vich maujood han. Je tuhanu lagda hai ki tuhade ghar ja jayadad vich fire ants han, ta is di suchna dio. Assi tuhanu fire ants de ilaaj layi मुफ्त किट भेजांगी। होर जानकारी लई फायर एंड्स क्वींसलैंड या फायर एंड्स QLD खोजो या 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो या फिर जिस किसी संस्था या विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं आपकी फरमाइशों की, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, मौसम का हालचाल भी बता दिया गया है। अब जरा आपकी फरमाइशों की बात हो जाए तो हम अपने प्रोग्राम में आगे की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी फरमाइशें, मतलब वो अजीज गाने, वो अच्छे खूबसूरत गाने जो आप हमारे इस प्रोग्राम में फरमाइश करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, रिकमेंड करते हो, और उसके बाद हम उन्हें आपके लिए प्ले करते हैं। और कभी कभी तो आप नए नए गानों के साथ हमें इंट्रोड्यूस करवाते हो जो कि हमने कभी सुने भी नहीं होते, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। सो मैं कहती हूँ ना कि आपकी फरमाइशें ही असली चार चांद लगाती है हमारे इस प्रोग्राम में। तो पीछे मत रहिए, जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जो नंबर आपको डायल करना है वो है +9182888717001। आई रिपीट, +9182888717001। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और अगर आप चाहते हैं किसी को कोई गाना, खूबसूरत गाना डेडिकेट करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से आ जाइए। और यहाँ पर हम अपनी पहली फरमाइश प्ले करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये है नई नवेली मूवी भूत बंगला का गाना। जी हाँ, और ये फरमाइश की गई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से। जी हाँ, गाना बहुत ही खूबसूरत है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमारी रिकमेंडेशन पे इस मूवी को देख लिया है और उन्होंने इसे काफी इंजॉय किया है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये है एक हॉरर कॉमेडी जो कि OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ गई है। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं अपने काउच के कम्फर्ट के साथ, आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है अब। सो या वॉच इट एंड लेट मी नो कैसी लगी आपको। हॉरर कॉमेडी है, डर भी लगेगा लेकिन इतना नहीं लगेगा, पर आपको हंसी आएगी। एंड या इसी के साथ थैंक यू सो मच अमला जी हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशों के लिए, और ये गाना सच में बहुत ही खूबसूरत है। सो आई एम ग्लैड आपने मूवी को एंजॉय किया और ये गाना भी आपको पसंद आया। तो ये गाना किया गया है फरमाइश, हम इसे प्ले करने वाले हैं, और मेरे बाकी के लिसनर्स आप भी जल्दी से आ जाइए क्योंकि आपकी फरमाइशों के लिए भी हम एकदम तैयार हैं। जी हाँ, ये रहा ये खूबसूरत सा गाना तू ही दिसदा।

जी हाँ दोस्तों, तो थोड़ी देर पहले हमने अक्षय कुमार के बारे में बात की, क्योंकि उनकी मूवी भूत बंगला नेटफ्लिक्स पे आ गई है, देख भी रहे हैं, उन्हें वो पसंद भी आ रही है। इट्स अ गुड मूवी, एटलीस्ट वन टाइम वॉच तो डेफिनेट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अक्षय कुमार एक बार फिर से आ रहे हैं एक भयंकर मूवी लेकर। जी हाँ, और वो क्या भयंकर मूवी है? वेल, वो मूवी है वेलकम 3, यानी कि वेलकम टू द जंगल। और उसी का गाना जो है वो आजकल टॉप 10 हॉट 10 में आपको सुनने को भी मिल रहा है, वही उच्चा लंबा कद। एग्जैक्टली, लेकिन ये उच्चा लंबा कद आपने वेलकम 1 में भी सुना था, उसको रिक्रिएट किया गया है। और इसमें दिशा पाटनी है, कैटरीना कैफ नहीं है, दैट्स व्हाट पीपल आर। But the thing is कि इसके बारे में मैं बात इसलिए ज्यादा कर रही हूँ क्योंकि वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर और टीजर अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जरूर देखने की जरूरत है। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड का कोई बड़ा एक्टर या कोई छोटा एक्टर है नहीं जो उस मूवी में नहीं डाला गया है। मुझे नहीं पता कि उस मूवी को बनाने के लिए कितना बजट लगा, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि उस मूवी को बनाने का आधे से ज्यादा बजट, आई मीन ऑलमोस्ट जो बजट है, वो सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे स्टार्स को इकट्ठा करने में ही लग गया होगा। मतलब उसमें सब है, हर कोई मिलेगा आपको, हर कोई लिटरली। एंड यू विल बी लाइक ओके, मतलब जिनको काम नहीं मिल रहा था सबको शायद उन्होंने इधर भर। एंड यहाँ पर कहूंगी कि अक्षय कुमार ने इस मामले में अच्छा काम भी किया, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो एक्टर्स हैं वो वेटरन एक्टर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, मेथड एक्टिंग करते हैं और अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए फेमस है। सो वेलकम टू द जंगल को वो फिर से वैसे ही रिक्रिएट कर पाएंगे, वैसे ही मजेदार बना पाएंगे जैसे कि वेलकम 1 थी, वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर आपने इसका टीजर देखा है तो आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। नहीं देखा है तो देखिए और फिर आप मुझे बताइए कि ऐसा कोई एक्टर है बॉलीवुड में जो कि आपको इस मूवी में ना मिला हो, इस मूवी के टीजर ट्रेलर में ना मिला हो। जरूर देखिए, गिव इट अ ट्राई, क्योंकि जल्द ही मूवी थिएटर्स में आने वाली है। और फिर मुझे ये बताइएगा कि क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं या नहीं।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
1: अरे वाह, इनका पता बताना.
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
3: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों, यूके जो है वो लगा हुआ है जबरदस्त कानून लाने, जबरदस्त लॉज को लाने. अब यहाँ पर हो गया है अंडर 16. जी हाँ, अंडर 16 जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है ऑफिशियली. जी हाँ, आपने सही सुना. आप लोग बोलोगे की ये क्या बात हुई निव्या, हम तो यहाँ पे पहले ही कर चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डू इट. मतलब ऑस्ट्रेलिया ने वो पहले ही कर दिया, यूके तो हमें कॉपी कर रहा है. वेल, यहाँ पे यूके कहेगा कि आपने ये सब किया और हम मान लेंगे हम आपको कॉपी कर रहे थे, लेकिन एक चीज जो हमने की वो आपने भी नहीं की. आप लोग बोलो कि अच्छा, अब यूके ने और क्या कर दिया है. वेल, अंडर 16 जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया यानी कि सोशल मीडिया से रिलेटेड जितनी भी जो साइट्स हैं, वो टिकटॉक हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जितनी भी साइट्स हैं, यूट्यूब हो, सब कुछ बैन चला पाएंगे. इनफैक्ट वो स्ट्रीमिंग साइट्स भी नहीं चला पाएंगे. जी हाँ, आपने सही सुना. और एक और जो चीज है जो यूके ने की है, जो कि हमने भी नहीं की यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं, वो ये है कि अंडर 18 नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. अब यूके में अंडर 19 कर्फ्यू, अंडर 18 जो है वो कर्फ्यू लगाया जाएगा, नाइट कर्फ्यू. और ये भी बात उन्होंने कह दी है. केयर स्टार्मर जो है वो लगे हुए हैं कि जो अभी तक नहीं हुआ मैं वो सब करके रहूंगा, हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम एवरीथिंग. अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक और लॉ निकाला था जहां पर वो बच्चों को न्यूड पिक्चर्स या ऐसी किसी भी मेलिशियस चीज से, मेलिशियस फोटोज से, फोटोज उनकी स्प्रेड ना हो, इनके लिए भी वो एक लॉ लेकर आए हैं. और इनके लिए भी उन्होंने सभी जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको फटकार लगा दिए, ताकि वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज को और सिक्योरिटीज को तगड़ा कर दे। जी हाँ, मतलब खतरनाक कर दे। अब ऐसे में यहाँ पे अंडर 16 का जो चल रहा था माजरा कि अंडर 16 जितने भी बच्चे हैं वो सोशल मीडिया एक्सेस ना कर पाएं, ये पहले ही से चल रहा था, लेकिन अब उसे ऑफिशियली ले आया गया है। साथ में अंडर 18 बच्चों के लिए या लोगों के लिए, बच्चे तो हम नहीं कह सकते, उनके लिए नाइट कर्फ्यू भी है। सो मुझे लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज अब वेस्टर्न रह रही है, वो ट्रेडिशनल कंट्रीज है वो वेस्टर्नाइजेशन की ओर भाग रही है। जी हाँ, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, और क्या आपको लगता है कि वैसा ही बैकलैश मिलने वाला है बहुत सारे लोगों से? अब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो कहेंगे कि रेवेन्यू जनरेट करते हैं लोग सोशल मीडिया से, डू यू हैव एनी आइडिया मिस्टर स्टार्मर, हाउ गुड यू डू इट? या ऑफकोर्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्टॉक को लाया गया था तब भी यही हुआ था, बहुत सारे लोग कह रहे थे इट्स अ गुड डिसीजन, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा उनके चाइल्ड को, उनके बच्चों को और उनकी पढ़ाई के टाइम को, सब कुछ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि कितना सारा पैसा अर्न किया जाता है सोशल मीडिया से, और लिटरली लोगों का करियर है, बच्चे अपना करियर जो है वो सोशल मीडिया से ही बना ले रहे हैं पहले, और वो अब वो नहीं कर पा रहे हैं। सो या अगेन, बहुत सारे प्रोज बहुत सारे कॉन्स, लेकिन यहाँ पर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर हमें बताइएगा। यहाँ पर हमारी तरफ से एक और जबरदस्त सा खूबसूरत सा

जी हाँ दोस्तों, कभी आपने यूट्यूबर बनने की सोची है? या आप ऑलरेडी यूट्यूबर हो? आप तो अपनी वीडियोस पुट टुगेदर करके यूट्यूब पे डालना पसंद है। अगर आप ये सब करना पसंद करते हो और करना चाहते हो, अभी तक नहीं किया है, तो मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। वेल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर आपको पता है कौन है? जी हाँ, ऑफ कोर्स आपने इसके बारे में सुना तो होगा। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने एक नया माइलस्टोन रीच कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स को अचीव कर लिया है। आप बोलोगे ओ माई गॉड, अब आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन चल रही होगी, तो वो बंदा हर महीने कितना कमाता है अपनी वीडियोस से? वेल, यू कैन ऑलरेडी इमेजिन, यू कैन टोटली इमेजिन, दिस पर्सन इज रियली रियली रियली रिच और ही इज ऑलरेडी अ बिलियनेयर। जी हाँ, आपने सही सुना, और यहाँ पर ये YouTube के ही दम पर इतने बड़े बन गए हैं। जी हाँ, प्राइम पेन का शो आता है, एक बहुत ही बड़ा गेमिंग शो जिसमें बड़े बड़े क्रिएटर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और अब मिस्टर बीस्ट जो हैं वो अपने चैनल के साथ जो है वो 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पा चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सो ये माइलस्टोन जो है वो उन्होंने अचीव किया है जून 12 को, और इसी के लिए जिमी डोनाल्डसन, जी हाँ, जो कि इनका रियल नाम है, मिस्टर बीस्ट इनका रियल नाम नहीं है, आई मीन किसी का नाम मिस्टर बीस्ट कैसे हो सकता है, राइट? सो इनका जो रियल नाम है वो है जिमी डोनाल्डसन, और इन्होंने जो ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन जो है रीच किया है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए यूट्यूब के सीईओ नील मोहन प्रेजेंट कर चुके हैं उन्हें अ कस्टम 500 मिलियन प्ले बटन, अ वन ऑफ अ काइंड ट्रॉफी इंस्पायर्ड बाय प्लेटफॉर्म्स डायमंड अवार्ड एंड डिजाइंड विद मिस्टर बीस्ट सिग्नेचर ब्रांडिंग। जी हाँ, सो उनका सिग्नेचर ब्रांड है, उनका सिग्नेचर है, और साथ में एक वन ऑफ अ काइंड ट्रॉफी है। सो अगर आपने देखा होगा कि जब आपको 500 के होते हैं तो आपको सिल्वर बटन मिलता है, जब आपके 1 मिलियन हो जाते हैं तो आपको गोल्डन बटन मिलता है, और ऐसे ऐसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो मिलियंस एंड मिलियंस में, आपको वो गोल्डन बटन जो है वो आगे मिलते जाते हैं। लेकिन किसी को भी ये नहीं मिला था, क्योंकि आज से पहले कोई भी 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक तो पहुंचा ही नहीं था, लेकिन मिस्टर बीस्ट वो भी कर चुके। वो अभी तक के सबसे फॉलो ज्यादा करने वाले मोस्ट फॉलोड यूट्यूबर्स में से एक थे, और उन्होंने अपने खिताब को और नई ऊंचाइयों पर वो ले गए हैं। एंड यहां पर उन्होंने सेलिब्रेट किया है अपने इस मोमेंट को, उन्होंने इस लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया, और उन्होंने कहा आई शुडंट हैव अ हाफ अ बिलियन सब्सक्राइबर्स, I shouldn't, I didn't grow up with much. जी हाँ, so yeah, ये that's what he said. I know, थोड़ा तो humble होना बनता है, right? So yeah, अगर आप भी YouTuber बनना चाहते हैं, बने, क्योंकि people earn literally so much from YouTube. यहाँ पर एक और गाना आप सब

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
10: यार, आई एम सो वरीड। Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
9: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
10: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
9: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
11: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
13: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
14: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
13: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
14: अरे, ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
13: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
14: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
13: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
14: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
15: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, आज है ट्यूसडे तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन और दे दी जाए, और ये मोटिवेशन मैं आपको देने वाली हूँ अगेन विद द हेल्प ऑफ मिस्टर एलन मस्क। अब वो दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन गए हैं, एटलीस्ट पेपर पर, और यहाँ पर ये सबसे बड़ी खबर है पिछले हफ्ते से, और अभी भी ये सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि उनका एज शेड्यूल क्या था, मतलब वो कौन सी एज में क्या बने थे। सो जो सबसे पहली बात करते हैं मिलेनियर की, सो ही बिकेम अ मिलेनियर व्हेन ही वाज 27। जी हाँ, आपने सही सुना। सो ही बिकेम अ मिलेनियर व्हेन ही वाज 27 एंड देन ही बिकेम अ बिलियनियर व्हेन ही वाज 41। जी हाँ, सो 27 से लेके 41 तक का टाइम लगा इनको मिलेनियर से बिलियनियर बनने का। और उसके बाद व्हेन ही बिकेम ट्रिलियनियर ही इज 54। नाउ ही इज 54 एंड ही हैज बिकम द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट ट्रिलियनियर ऑफ दिस वर्ल्ड। जी हाँ, आपने सही सुना। सो 27 में मिलेनियर, 41 में बिलियनियर, 54 में ट्रिलियनियर। जी हाँ, अब मैं एक ही चीज कहूंगी कि यहां पर देख के ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब लंबा टाइम लगा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी हो गया है, बट इतना भी लंबा टाइम नहीं मिला है। और एक चीज एलन मस्क की जो सबसे बड़ी है, जो कि मैं और किसी भी यू नो इंडस्ट्रियलिस्ट में या टेक जाइंट में नहीं देख पाती हूँ, वो है ग्रोथ। मतलब एलन मस्क की ग्रोथ रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, एज फार एज अदर यू नो बिलियनर्स वी टॉक अबाउट, उनकी ग्रोथ जो है वो ऐसा लगता है कि ठीक है वो बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम पे थोड़ी रुकी रुकी भी है, मतलब उससे ज्यादा वो ग्रोथ बढ़ नहीं सकती है। लेकिन एलन मस्क इज द ओनली पर्सन जिनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, मतलब इतनी ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है कि अभी भी मुझे नहीं लगता कि वो रुकने का नाम ले रही है। इससे ऐसा ही चलता रहा तो वो 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन और 4 ट्रिलियन भी कमा लेंगे जल्द ही 2-3 सालों में। और इसके पीछे रीजन क्या है, उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, मतलब जो चीज हम सिर्फ आज के लिए नहीं बना रहे हैं, फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने कोई एम्बिशन देखा है, अगर आप भी कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो ट्राई फॉर समथिंग जो कि फ्यूचरिस्टिक हो। आई नो आपको ऐसा लगेगा कि ओके हमको सडनली तो उसका मुनाफा ज्यादा नहीं मिलने वाला है, वेल ऑफकोर्स आपको सडनली एकदम से जो है वो अभी अभी में उसका मुनाफा ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में उसका मुनाफा जो है वो बढ़ता बढ़ता बढ़ता ही चला जाएगा। अब जिन्होंने R&D किया था AI के लिए, जब AI था भी नहीं, वो तो यही सोच रहे होंगे कि हमने AI में इतना सारा पैसा क्यों खर्च दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बट लुक एट द ChatGPT, या लुक एट XAI, लुक एट ऑल द अदर AIs, मतलब आप उनके बारे में कह सकते हो कि उन्होंने फ्यूचरिस्टिक सोचा और आज वो इस दुनिया पर राज कर रहे हैं। वेल ऑफकोर्स वी कैन टॉक अबाउट अदर इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो, बट एलन मस्क इज द ओनली पर्सन जिनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज्यादा मल्टीप्लाई हो रही है और बहुत ज्यादा जल्दी मल्टीप्लाई हो रही है, और ग्रोथ रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ऐसा ही आगे होता रहेगा। क्योंकि अगर आप उनके जितने भी बिजनेसेस को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। सो ट्राई फॉर समथिंग फ्यूचरिस्टिक, नॉट जस्ट यू नो टारगेट प्रेजेंट बट फ्यूचर also, because future is the present, future will be the present at the end of the day, and that will be very beneficial for your business. So yeah, remember that, because it's Tuesday, so I wanted to motivate you. और मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहती थी, और यहाँ पर अब जरा चलते हैं सीधा, आपको सुनाते हैं एक और जबरदस्त सा गाना।
0: Yeah, wanna feel that? Come on, girl. Be the beat. Yeah, this. Check this out now.

Check us out.

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं खबरों की दुनिया की। क्या हो रहा है खबरों की दुनिया में और क्या चल रहा है वॉर फ्रंट पे, जो कि अब समझौते पर पहुंच गई है और समझौता हो गया है, एटलीस्ट पेपर्स पर हो गया है, लेकिन वो लागू होगा या नहीं?

जहाँ दोस्तों, और इसके साथ अब जरा बात कर लेते हैं खबरों की दुनिया की। क्या हो रहा है खबरों की दुनिया में और क्या चल रहा है वॉर फ्रंट पे, जो कि अब समझौते पर पहुंच गई है और समझौता हो गया है, एटलीस्ट पेपर्स पर हो गया है, लेकिन वो लागू होगा या नहीं आ जाएगा ऐसे दिन जिन इस समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तकनीकी स्तर की बातचीत इस हफ्ते शुरू होने की उम्मीद है। वहीं प्रतिबंधों में किसी भी तरह के राहत या संपत्तियों की रिहाई इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान समझौते के तहत अपने वादों को पूरा करता है या नहीं। उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने सोमवार को सीएनएन के जैक टैपर्स से बातचीत में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ एमओयू करीब डेढ़ पन्ने का है और ये एक बहुत ही सामान्य दस्तावेज है। वैसे यहां भी कहा गया कि कई बारीक जानकारियां भविष्य की बातचीत के दौरान तय की जाएंगी, और इस पर ईरान की भी प्रतिक्रिया आई है। आइए जरा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं एक और जबरदस्त सा गाना।

जी हाँ दोस्तों, वही ईरान के शीर्ष नेताओं ने अमेरिका के साथ समझौते पर अब क्या कहा है, आइए जरा वो भी जान लेते हैं। सो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़िश्कियान ने कहा है कि देश के सुप्रीम लीडर मुज़्तबा ख़ामेनेई ने अमेरिका के साथ समझौते में देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाले प्रावधानों को शामिल कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। एक्स पर किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा कि अगर सभी प्रावधानों को सही ढंग से लागू किया जाता है तो इसे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला दस्तावेज माना जा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते पर ईरान के सुप्रीम लीडर की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं आई है। मार्च में सर्वोच्च नेता बनने के बाद से मुज़्तबा ख़ामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। उन्होंने अपने पिता आयतुल्ला अली ख़ामेनेई की जगह ये पद संभाला था। वहीं अमेरिका के साथ बातचीत में शीर्ष वार्ताकार की भूमिका निभाने वाले ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गलिफाफ ने कहा कि ईरान ने अंतिम जीत की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने ईरान की जनता के ऐतिहासिक प्रतिरोध की सराहना भी यहां पर की है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
5: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ, फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
4: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
5: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
6: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अमेरिका कुछ कह रहा है, ईरान कुछ कह रहा है, लेकिन नेतन्याहू का इरादा कुछ और ही है। जी हाँ, नेतन्याहू ने अमेरिका ईरान समझौते के बाद कहा लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के ऐलान के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को यरूशलम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इसराइल को पूरी तरह तबाह होने से बचा लिया है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को सतर्क रहना होगा और जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा और बचाव करना होगा। नेतन्याहू का बयान ऐसे समय पर आया है जब इसराइल में अमेरिका ईरान डील को लेकर असहजता दिख रही है। इस समझौते के ऐलान के बाद इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और कट्टर दक्षिणपंथी नेता इतामार बेन गवेर ने कहा कि उनका देश इस समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मैं एक साफ नीति पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत इजरायली सेना लेबनान, सीरिया और गाजा के बफर जोन में अनिश्चित समय तक रहेगी। नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए जब तक जरूरत होगी तब तक सिक्योरिटी जोन में बना रहेगा। नेतन्याहू ने कहा कि कुछ मामलों में उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राय एक जैसी नहीं होती, लेकिन वो इसराइल के हितों की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि जब भी जरूरत होगी वो इसराइल के हितों के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि वो उत्तरी इसराइल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तरी इसराइल की सीमा लेबनान से लगती है।

जी दोस्तों, तो इसी के साथ अब ट्रंप रोस्टिंग सेशन शुरू करते हैं। वेल ऑफ कोर्स अच्छी खबर है, तो हमारा खुश होने का मन भी कर रहा है, हंसने का भी मन कर रहा है। और ट्रंप ने जो है वो कह दिया है कि ईरान और अमेरिका जो है और इसराइल युद्ध जो है वो खत्म होने के कगार पर है। वहां नेतन्याहू उनकी बात मानने में नहीं आ रहे। सो ऑफ कोर्स उनकी बात कितने लोग मानते हैं ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन ट्रंप जो है वो पूरी तरह प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। जी हाँ, कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो पूरी तरह से खुल गया है, इट्स फ्री। जी हाँ, ships are starting to move, many loaded up with oil out of the Strait of Hormuz. They are going along the southern highway, which is totally safe, secure and pristine. There are other areas of travel also. जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि इनका विश्वास हम कर नहीं पा रहे क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा गड़बड़ की है। इनफैक्ट इंडिया के मामले में भी इन्होंने बहुत ज्यादा गड़बड़ की है। इंडियन ships पे, इंडियन क्रू जिस ships पे था उन पर हमला कर दिया, बहुत सारे इंडियन लोगों की जो है वो जान चली गई। ये जो अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने जो कॉन्क्वेस्ट किया है। जी हाँ, इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा ग्रेट मानते हैं और वो कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, ईरान ने कह दिया है कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ऑल्सो ये भी उन्होंने कह दिया है कि जो लोग कह रहे थे कि जो $300 बिलियन पे करने वाला है या $300 मिलियन जो पे करने वाला है अमेरिका, वो खबर बिल्कुल झूठी है। जी हाँ, लेकिन ये खबर झूठी

है। ईरान ने खुद कहा है कि ये जो समझौता हुआ है उसमें लिखा गया है कि अमेरिका ईरान को पे करने वाला है $300 मिलियन से ज्यादा, जो गड़बड़ उन्होंने की है इसलिए कि जो तोड़फोड़ हुई है, जो उन्होंने बॉम्बिंग की है ईरान में, उससे जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई जो है वो अमेरिका करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ओ शिट, मेरा तो सारा काम गड़बड़ होने वाला है, मतलब मैंने ये पीस डील जो है वो साइन तो करवा ली है लेकिन अब इन्होंने तो सच बोल दिया, ये तो चिल्ला चिल्ला के सच बोल रहे हैं, चीख चीख के सच बोल रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। तो उन्होंने कह दिया कि यू नो व्हाट, ये जो $300 मिलियन जो हमने ईरान को देना, ये जो बात है ये हम सही नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है, ये तो डेमोक्रेट्स ने फैलाई है। जी हाँ, अच्छा, ये इंसान इतना फनी है कि इनको जब भी कुछ भी लगता है कि ये तो गड़बड़ है, ये उनके गड़बड़ उनके लिए काम कर सकती है, तो वो सीधा डेमोक्रेट्स के सर पे फेंक देते हैं कि नहीं नहीं ये हमने नहीं किया, ये बिल्कुल सही भी नहीं है, और ये तो डेमोक्रेट्स का प्रोपेगंडा है जो उन्होंने किया है मेरे लिए। अरे भाई, डेमोक्रेट्स नहीं, ईरान कह रहा है, ईरान के दस्तावेज कह रहे हैं कि यही चीज है, आपको वो पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो पीस डील हुई है ये बहुत ही ज्यादा फनी है। सबसे पहले तो एक चीज अच्छी है कि ऑफकोर्स लोगों की जान नहीं जाएगी एंड दैट इज द बेस्ट थिंग, लेकिन पीस डील में जितने भी पॉइंटर्स हैं वो इतने ज्यादा फनी है। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, वो तो लड़ाई से पहले ही उसने बोल दिया था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। जी हाँ, तो लड़ाई की क्यों। अच्छा, दूसरी चीज जो उन्होंने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरह से खुल जाएगा। अरे भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लड़ाई से पहले भी खुला हुआ था, तो तुमने नया क्या करवा दिया। जी हाँ, तीसरी चीज उन्होंने ये बोला कि ईरान जो है वो पूरी तरह से हमारी बात मानेगा, उन पर जो है जितनी भी सैंक्शंस हैं वो हम जो है लगाई थी उनको हम अब हटा लेंगे। भाई, जो इकलौती चीज तुम्हारी लिवरेज थी जो तुमने ईरान पर सैंक्शंस लगाई हुई थी, तुमने ऐसी लड़ाई की कि अब वो सैंक्शंस तुम्हें ही हटानी पड़ रही है, मतलब ये वॉर जो तुमने शुरू की अब उसकी भरपाई भी तुम करोगे। और ऑफकोर्स जो लास्ट है और जो मेन है, जिसके बारे में मैंने बोला कि $300 मिलियन से ज्यादा, और 300 मिलियन एक बहुत ही छोटी रकम है, इससे ज्यादा ये रकम हो सकती है, ये तो इन्होंने 300 मिलियन जो है वो एक जो है वो आपको एक नंबर दिया है, लेकिन 300 मिलियन नहीं हो सकता, इससे ज्यादा होगा एंड आई कैन गारंटी यू दैट। सो वो भी आपको पे करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स वो आप थोड़ी करोगे, वो तो अमेरिकन टैक्स पेयर्स करेंगे। सो बेसिकली आपने इस लड़ाई से क्या उखाड़ लिया, जो चीजें आप बोल रहे हो ईरान अब नहीं करेगा, ईरान अब वो नहीं करेगा, ईरान ने तो वो पहले ही नहीं किया, वो सारी चीजें पहले भी खुली हुई थी। जी हाँ, जिसे आपने अपनी लड़ाई की वजह से बंद करवा दिया, और अब आप कह रहे हो कि इसराइल जो है वो आपकी कभी नहीं सुनता, इसराइल जो है वो पीछे चला जाएगा, नेतन्याहू जो है वो इसराइल को पीछे चले ले जाएंगे। अरे, तुमको ये पहले नहीं पता चला कि इसराइल तुमको कौन सी सलाह दे रहा है, और जो वो सलाह दे रहा है तुमको फॉलो करनी है या नहीं करनी है। बट लेट्स बी रियल, हम सबको पता है कि ट्रंप इसराइल की बात क्यों मानते हैं। इट्स नॉट कि इसराइल अमेरिका की बात मानता है, इट्स द अदर वे अराउंड, अमेरिका इसराइल की बात मानता है। जी हाँ, और यहां पर सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मोसाद को, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन मोसाद के पास है, मोसाद और इसराइल को कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत नहीं है, दे कैन लिटरली बॉम्ब विदाउट बॉम्बिंग या अमेरिका। सो यहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है ट्रंप के खिलाफ, उनको तो अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, अगर ना बात नहीं मानेंगे तो बात नहीं बनेगी, और बात नहीं बनेगी तो कुर्सी चली जाएगी, और कुर्सी चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। सो या, डोनाल्ड ट्रंप इज लाइक ओके, और बाकी सब ठीक है, मैंने सब कुछ खुलवा दिया है, मैंने सब कुछ कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया, मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो ब्लास्ट कर दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब वो नहीं बनाएंगे। अरे, वो कुछ भी नहीं बना रहे थे, वो सब कुछ खुला था, तुमने बेवकूफ बैल बुद्धि इंसान ने उसे बंद करवा दिया था। सो या, इट इज व्हाट इट इज, अमेरिका जो है और ये चीज जो है वो मुझे लगता है लड़ाई और ये फालतूपंती सूझती है, क्योंकि अपने 80th बर्थडे पे उन्होंने लिटरली रेसलिंग, बॉक्सिंग और एथलीट कंपटीशन जो है वो अपने लॉन में करवाया व्हाइट हाउस के। जी हाँ, मतलब अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है बहुत ही स्टाइल से डोनाल्ड ट्रंप ने, पूरी रेसलिंग, पूरी जो है वो यू नो बॉक्सिंग और ऐसी सिचुएशन, और वहां पे रिंग जो है वो लगाए गए और लोगों को एंटरटेन किया गया। ये इंसान सीधी बुद्धि का नहीं है, इतना तो मुझे पता चल गया। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
3: जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो एकदम नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करते हैं, और खासकर लॉ के आगे वो नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है जो अपने आप को इतना हाई एंड माइटी समझते हैं कि उनको लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं, वो लॉ ब्रेक कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो कि लिटरली बहुत ही बड़े और बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग वाले सेलिब्रिटीज हैं, जब वो अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं, आई फील रियली गुड। सो ऐसा ही कुछ हुआ जो कि इंसिडेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और ये इंसिडेंट है ड्वेन जॉनसन से रिलेटेड। या ड्वेन जॉनसन जो कि आपके द रॉक हैं, जो हम सबके फेवरेट एक्टर हैं, फेवरेट रेसलर हैं और फेवरेट सब कुछ है। आई मीन ही इज हॉट एंड लिटरली विमेन के फेवरेट भी हैं वो, यू नो। जी हाँ, सो यहाँ पर हॉलीवुड में जो है एक बड़ा ही फनी इंसिडेंट हुआ, और फनी के साथ साथ बहुत ही अच्छा इंसिडेंट भी मैं कहूंगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल सेट करने वाला इंसिडेंट था, जहां पर ड्वेन जॉनसन जो कि लिटरली जा रहे थे एलए में, वो ड्राइव करते हुए जा रहे थे, और वहां पर एकदम से पुलिस जो है, जो एलए पुलिस है, वो उनकी गाड़ी को रोकती है, और फिर उनको जो है वो अपने कागजात दिखाने के लिए कहा जाता है, उनको रोका जाता है, और उसके बाद वो बड़े ही अच्छे से जो है वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं, वो निकलते हैं, वो अपनी गाड़ी के कागजात निकालते हैं, वो बहुत ही अच्छे से पोलाइटली बात करते हैं पुलिस वालों से, और वो कुछ भी ऐसा हाई और माइटी पन नहीं दिखाते, जो कि मतलब इतना टैलेंटेड बंदा, लिटरली इतना बड़ा बंदा, इतना बड़ी सेलिब्रिटी, लेकिन फिर भी इतना डाउन टू अर्थ, जो कि वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत कोई उच्च काम कर दिया और ऐसा करके, ऑफकोर्स दैट्स हाउ इट शुड बी, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिटरली इतने ज्यादा काबिल नहीं भी होते, लेकिन उनके जो एटीट्यूड होते हैं ना, वो उससे भी ज्यादा होते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि ये तब हुआ जब ड्वेन जॉनसन जो है वो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के लिए उन्होंने अटेंड किया। ये सेरेमनी थी एमिली ब्लंट एंड स्टेनली टूची जी की उनको ऑनर किया गया वहां पर और उसी में शामिल होने वो गए थे और वहां पर ही जाते जाते जो है और वहां से आते आते जो है ये इंसिडेंट हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें इसलिए रोका गया क्योंकि उनकी कार की जो है विंडोज वो टिंटेड थी और ट्रैफिक चेक के लिए और वो टिंटेड विंडोज के लिए वहां पर पुलिस ने उन्हें रोका। वो निकले और बहुत ही अच्छे से जो है उन्होंने कामली कोऑपरेट किया जो पुलिस वाला था उसके साथ और उसके बाद जो है वो बड़े ही अच्छे से थैंक यू करके वो वहां से निकल गए विदाउट एनी ड्रामा। एंड ये वीडियो में कैप्चर हुआ, लोगों ने इसे वायरल कर दिया एंड पीपल आर लविंग हिम इवन मोर। जी हाँ, ड्वेन जॉनसन इज लिटरली पीपल्स फेवरेट बिकॉज अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने उनके लिए एक इन्फ्लुएंसर ने फोटो डाली हुई थी उनकी और वीडियो डाली हुई थी और उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट, यू शुड नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स बिकॉज लुक एट दिस, द रॉक ड्वेन जॉनसन इज सेलिंग शैम्पू एंड ही इज लिटरली बॉल्ड। सो यहाँ पर ये वीडियो जो है वो इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि लिटरली ड्वेन जॉनसन के पास ये वीडियो पहुंच गई और उन्होंने कहा अपने एक कैरेक्टर का, फिल्मी कैरेक्टर का जिसमें उन्होंने बड़े बड़े बाल जो है उनके विग लगी हुई है, उन्होंने कहा कि समटाइम्स इवन दैट यू नो हीरो नीड्स यू नो लिटल शैम्पू कंडीशनर एंड स्टफ। सो या उन्होंने उस जो इन्फ्लुएंसर ने ये वीडियो बनाई थी उसके लिए गिफ्ट भेजा लिटरली और इतना अच्छा जेस्चर उन्होंने दिखाया, तो अनदर रीजन टू लव हिम मोर। एंड मैं हमेशा यही कहूंगी कि अच्छे से ड्राइव करना है हम सबको, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अमेरिका एलए, इट्स अबाउट अस, इट्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया, इट्स अबाउट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वी नीड टू ड्राइव सेफली। हमें अच्छे से स्पीड लिमिट में रहकर ड्राइव करना है। अगर हमें कोई रोकने के लिए बोलता है तो हमें पोलाइटली उनसे बात करनी है बिकॉज दे आर ऑल्सो डूइंग देयर वर्क और अच्छे से हमें कोऑपरेट करना है, हमें कभी भी हाई एंड माइटी बिहेव नहीं करना है इन केसेस में। या ड्वेन जॉनसन ने कर दिया है अच्छे से ये एग्जाम्पल सेट, तो आई थिंक हम सबको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा खास है।

जी दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट की तरफ जाने का। जी हाँ, और फेवरेट सेगमेंट है ओल्ड इज गोल्ड, पुराने गाने, पुरानी बातें, पुराने किस्से, पुराने तराने। तो इन सब के लिए हम रेडी हैं, और क्या आप रेडी हो? नहीं हो, चलिए हो जाइए। अगर नहीं हो तो अभी हो जाइए, और अगर हो ऑलरेडी तो फिर तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हम आपको सुनाने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त सा गाना। और ये गाना है बर्थडे बॉय का, क्योंकि आज है जन्मदिन इन्हीं का जिनका गाना हम प्ले करने वाले हैं। गेस कीजिए किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, और फिर हम उनको करेंगे बर्थडे विश, क्योंकि लिटरली ही इज ऑल्सो अ लेजेंड। एंड सबसे पहले ये वाला गाना जिसका नाम है जिहाले मिस्किन, जी हाँ, आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ जरा बता दें आपको कि किसके बारे में हम बात कर रहे थे। वेल ऑफ कोर्स हम बात कर रहे थे मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। जी हाँ, आज है उनका जन्मदिन। सो दादा का है जन्मदिन, और दादा, आप बोलोगे दादा कौन? वेल, उनको दादा ही कहा जाता है और मिथुन दा भी उन्हें कहा जाता है। सो ऑफ कोर्स जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद सर हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिस्वानी की तरफ से। और हम आज भी डिस्को डांस कर रहे हैं आपसे इंस्पायर होके। मतलब आपने इतनी इंस्पिरेशन दे दी कि हमें लगता है कि फिटनेस के साथ आप डिस्को डांस भी कर सकते हो, आप डिस्को डांस करते करते भी फिट रह सकते हो। दैट इज अ ग्रेट वे टू बी फिट। जी हाँ, सो अगेन थैंक यू सो मच। और आपकी स्क्रीन प्रेजेंस और आपके फैंस जो है हमेशा आपको याद करते हैं, और जब भी आप सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करते हैं, सब के सब आपके फैंस जो है वो मजे से थिएटर्स में पहुंच जाते हैं और ऐसे ही अपनी झलक हमें दिखाते रहिए, ऐसे ही अपने स्पेशल स्पेशल परफॉर्मेंसेस हमारे लिए लाते रहिए, और ऐसे ही आप हेल्दी रहिए, हेल्दी रहिए। साल के लिए आपके लिए, साल आपके लिए बहुत अच्छा और सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ाई करें, यही हमारी दुआ है। दैट्स इट। इसी के साथ उन्हीं का गाना अब डिस्को डांसर, मतलब हमारे बॉलीवुड के पहले डिस्को डांसर तो यही थे, तो आइए फिर यही गाना उनके लिए प्ले कर देते हैं क्योंकि उनका है जन्मदिन आज।

0: जी हाँ दोस्तों, ये गाना और ये मूवी मिथुन चक्रवर्ती के लिए कितनी ज्यादा परफेक्ट थी, इसके बारे में राज बब्बर ने कार्यक्रम में बताया था। जी हाँ, राज बब्बर कहते थे कि बोनी कपूर साहब की पहली मूवी थी हम पांच, और उसमें बड़े बड़े स्टार्स थे, और बड़े बड़े स्टार्स एक एक खतरनाक डांसर था। अब एक एक खतरनाक डांसर्स में वो ऑफकोर्स यहाँ पर तंज कस के वो बोल रहे थे, सरकास्टिक वे में बोल रहे थे, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा डांस करने वाले नहीं थे। नसीरुद्दीन शाह थे, राज बब्बर थे, और भी बहुत सारे लोग थे, और गुलशन ग्रोवर थे, और ये सब जो है किन्हीं से भी, इनमें से कोई भी जो था जिनमें से ये थे, उनमें किसी से भी अच्छे से डांस नहीं होता था। लेकिन वहां पर मिथुन चक्रवर्ती भी इस मूवी में थे। अब वो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई कि पहले जब वो सब गलत करते थे तो वहां पर उन सबको गालियां पड़ती थी, तो वहां पर ये चीज जो है वो ठीक लगती थी कि नहीं नहीं गालियां पड़ रही हैं पर सबको पड़ रही है, मतलब डांट पड़ रही है पर सबको पड़ रही है, बुरा कर रहे पर सब कुछ कर रहे, सब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती को जो भी वो डांस मास्टर कुछ भी सिखाते थे, मिथुन चक्रवर्ती एकदम परफेक्टली कर देते थे। एंड ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त के सबसे अच्छे डांसर, जो एक्टर जो कि बहुत ही अच्छा डांस कर लेते थे, मिथुन चक्रवर्ती वॉज ऑन टॉप। और इसीलिए उनको ये वाली मूवी में रोल भी मिला है। ये वाली मूवी में उन्होंने डांस करके प्रूव कर दिया है कि वो डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर, वो ऐसा नहीं है। राज बब्बर कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती को जो भी एक्शन बताया जाता था वो सब कर देते थे। कहते हैं हम लोग परेशान हो गए कि ऐसे कैसे चलेगा, हमसे हो नहीं रहा है और ये बंदा हर कुछ कर दे रहा है। कहते हैं तो हमने सिंडिकेट बनाया, हमने अपना ये एक ग्रुप बनाया, और वहां पर उस ग्रुप के साथ हमने ये बोला कि जब भी अब हम गलत स्टेप करेंगे और ये गलत स्टेप करने की वजह से हमें गालियां पड़ेंगी, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, और जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो डायरेक्टर हमारे पास भागा भागा आएगा, और फिर हम जो भी बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने गलत स्टेप किए, जो कि क्योंकि सच में उनको डांस नहीं आता था करने, मतलब सबके सब, राज बब्बर, गुलशन ग्रोवर, नसीरुद्दीन शाह, किसी से भी अच्छा डांस होता ही नहीं था। वो थोड़े बहुत हाथ पैर हिला देते थे, बट उससे अलावा उनसे कुछ नहीं होता था। तो राज बब्बर ने जो प्लानिंग की थी, उनके ग्रुप ने जो प्लानिंग की थी, वो वैसा ही हुआ। उनको गालियां पड़ी और वो गालियों से नाराज होकर चल दिए, और वहां पर बोनी कपूर की पहली पिक्चर थी तो वो बेचारे टेंशन में भागे भागे आए, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ओके ठीक है, आजू बाजू वाले लोग जो है वो अच्छा डांस कर लेंगे, जिनको आता है हम थोड़े हाथ हिला लेंगे। या उन्होंने मना लिया और उन्होंने प्रूव कर दिया कि ठीक है, अगर हमें डांस नहीं आता तो क्या हो गया, आजू बाजू से करवा लो, हम नहीं करेंगे। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने प्रूव कर दिया कि जो स्टेप आप मुझे बताओगे उसे मैं एकदम वैसा ही करूंगा। सो या ही इज अ काइंड ऑफ डांस किंग ऑफ दैट टाइम। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए, मेरी तरफ से नहीं बल्कि फरमाइशी गीत है मेरी बहुत ही प्यारी लिसनर की तरफ से। गाने का नाम है सुन सुन सुन जालिम। अरे वाह, जालिम से क्या सुनाया जा रहा है जालिम को, मुझे नहीं पता। अभी सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बात, क्योंकि गीता दत्त और रफी साहब की आवाज में ये गाना। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत सी फरमाइश के लिए।
1: यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम,

0: प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम।
1: जा जा जा जा बेवफा,
0: सुन सुन सुन सुन जालिमा।
2: कहना पड़ेगा गुरुदत्त और श्यामा की ये खूबसूरत कहानी और रफी साहब और गीता दत्त जी की ये जुबानी, मतलब क्या कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, और गाना बहुत ही खूबसूरत है। मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ, मेरे लिसनर्स की जो पसंद होती है ना, वो लाजवाब होती है, वो बेमिसाल होती है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता। सो या थैंक यू सो मच मेरे लिसनर्स को ऐसी प्यारी प्यारी फरमाइशें करने के लिए। और यहाँ पर अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया, जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ऑफकोर्स मजे करने हैं, हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है, खिलखिलाते रहना है, मुस्कुराते रहना है, गाते रहना है, और इसी के साथ सुनते रहना है रेडियो ब्रिस्वानी को, जो कि हमेशा हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे गाने और अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे फसाने लेकर आता रहता है। और इसी के साथ ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए अब मेरी तरफ से, और इस गाने का नाम है जरा नजरों से कह दो जी। हाँ, खूबसूरत गाने, कुछ गाने इतने खूबसूरत होते हैं ना, मतलब आपको ऐसा लगता है कि बस वो चलते रहे, और वो लिटरली कल्ट फेवरेट होते हैं, वो लिटरली लेजेंडरी होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, और ये गाना भी कुछ ऐसा ही है। मिलते हैं कल, बाय बाय, सी यू, टाटा।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो जीना आसान।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

नमस्कार, आप सुन रही हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ई स्कूटर और ई बाइक के लिए सख्त कानून। ब्रिस्बेन और पूरे क्वींसलैंड में ई स्कूटर और ई बाइक से होने वाले हादसों को रोकने के लिए सरकार 1 जुलाई से बेहद कड़े नियम लागू करने जा रही है। नए कानून के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चे के सार्वजनिक रास्तों पर ई स्कूटर चलाने पर बैन लगा दिया गया है। इसी के साथ ब्रिस्बेन ओपन हाउस 2026 का शेड्यूल जारी। जी हां, ब्रिस्बेन के आलीशान और ऐतिहासिक आर्किटेक्चर को करीब से देखने के शौकीन के लिए अच्छी खबर है। ब्रिस्बेन ओपन हाउस के इस साल के प्रोग्राम की लिस्ट आज जारी कर दी गई है। आगामी 18 से 19 जुलाई को शहर की 93 मशहूर इमारतों और 16 प्राइवेट घर आम जनता के लिए खोले जाएंगे। वहीं ब्रिस्बेन का आज का मौसम, अगर आज आप बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं तो आसमान में बादलों का डेरा रहने वाला है, ये पहले ही आपको बता दिया गया था। और आज ब्रिस्बेन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसी के साथ गेटवे मोटरवे पर आज रात रहेगा रैंप क्लोजर। आज रात सफर करने वाले ड्राइवरों के लिए एक जरूरी ट्रैफिक अलर्ट है। टिग्नालपा में गेटवे मोटर का नॉर्थ बाउंड ऑफ रैंप जो विनम रोड की तरफ जाता है, रोड वर्कर्स के कारण आज रात 8 बजे से लेकर कल सुबह 5 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा। वहीं ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर जेटस्टार पैसेंजर्स के लिए नया अपडेट। अगर आप आज या आने वाले दिनों में ब्रिस्बेन डोमेस्टिक टर्मिनल से ट्रैवल कर रहे हैं तो ध्यान दें, एयरपोर्ट पर चल रहे रेनोवेशन के कारण जेटस्टार के यात्रियों के लिए एक अस्थायी चेक इन और बैग ड्रॉप फैसिलिटी बनाई गई है। ये टर्मिनल के उत्तरी हिस्से में क्वांटस एंट्री के ठीक सामने है, इसलिए फ्लाइट के समय से थोड़ा पहले पहुंचना बेहतर होगा। वहीं ब्रिस्बेन सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई शुरू। ब्रिस्बेन के एक प्राइवेट स्कूल के छात्र पर चल रहे हाई प्रोफाइल काउंटर टेररिज्म मामले की सुनवाई सोमवार से क्वींसलैंड सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है। इस लड़के पर आरोप है उसने साल 2024 में एक प्रतिबंधित विचारधारा से प्रभावित होकर कुछ राजनीतिक ठिकानों और लेबर डे मार्च पर हमले की

लीटर और हवाई ईंधन पर 12.5 रुपए प्रति लीटर का टैक्स लगेगा। वहीं सोने की कीमतों में मामूली गिरावट, पिछले 2-3 दिनों की जबरदस्त तेजी के बाद आज भारतीय बाजारों में सोने के दाम थोड़े शांत हुए हैं। 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 160 रुपए गिरकर 1,51,370 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। वहीं डिजिटल अरेस्ट पर सरकार का बड़ा एक्शन, देश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों को देखते हुए होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक नई नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। वहीं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में नया रिकॉर्ड, भारत ने मोबाइल प्रोडक्शन में एक और नया मुकाम हासिल कर लिया है। आज जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 की पहली छमाही में भारत से होने वाला स्मार्टफोन एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 25% बढ़ गया है। वहीं मॉनसून की ताजा अपडेट, मौसम विभाग के अनुसार देश के दक्षिण और पश्चिम हिस्सों में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 48 घंटों में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हाईवे सेफ्टी के लिए नए नियम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने देश के सभी एक्सप्रेसवे पर रात के समय होने वाले हादसों को रोकने के लिए इंटेलिजेंट लाइटिंग और AI कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले US ईरान पीस डील की तैयारी, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब खत्म होने की कगार पर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने आज घोषणा की है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच फाइनल बातचीत इसी शुक्रवार यानी 19 जून से शुरू होने जा रही है। वहीं फ्रांस में G7 समिट की शुरुआत, फ्रांस के एवियन शहर में आज से 2026 के G7 लीडर्स समिट की शुरुआत हो गई है। इस समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री, इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के कई बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं गूगल का नया AI प्राइवेसी टूल रोल आउट, टेक दिग्गज गूगल ने आज दुनिया भर के यूजर्स के लिए एक नया प्राइवेसी टूल लॉन्च किया है। ये टूल इंटरनेट पर यूजर्स के पर्सनल डाटा को बिना उनकी मर्जी के ट्रैक होने से रोकेगा। वहीं यूरोप में भीषण गर्मी का अलर्ट, यूरोप के कई देश इन दिनों जून के महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना कर रहे हैं। स्पेन और इटली के कुछ शहरों में पारा 42 डिग्री को पार कर गया है। वहां की सरकारों ने हेल्थ इमरजेंसी गाइडलाइंस जारी करते हुए लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। वहीं जापान में मिला प्राचीन शहर, जापान के तटीय इलाके के पुरातत्वीवादों यानी आर्कियोलॉजिस्ट को समुद्र के नीचे एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। शुरुआती रिसर्च के मुताबिक ये करीब 2000 साल पुराना हो सकता है। वहीं विमानों के लिए नया इको फ्यूल अनिवार्य, यूरोपियन यूनियन ने आज एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए घोषणा की है कि 2030 तक सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कम से कम 20% इको फ्रेंडली ईंधन यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करना होगा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना को टाइम मैगजीन ने साल 2026 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया है। वहीं भारत ए और श्रीलंका ए मैच में विवाद, श्रीलंका के डंबुला में खेले गए एक मैच के बाद भारत के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी विवादों में आ गए हैं। सुपर ओवर में भारत की हार के बाद वैभव और श्रीलंका के खिलाड़ी विशेन हलमबागे के बीच मैदान पर तीखी बहस हो गई, जिसके बाद वैभव ने उन्हें धक्का दे दिया। वहीं फीफा वर्ल्ड कप में नेमार की इंजरी, फुटबॉल की दुनिया से एक बड़ी खबर आ रही है। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर की चोट को लेकर मेडिकल टीम ने अपडेट दिया है कि वो अपनी गंभीर चोट के कारण फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज के सभी मैचों से बाहर हो सकते हैं। वहीं बेंजेमा का बड़ा कमबैक, फुटबॉल स्टार करीम बेंजेमा ने संन्यास की खबरों पर विराम लगाते हुए यूरोपियन क्लब फुटबॉल में एक बार फिर जबरदस्त वापसी की घोषणा की है। इसी के साथ विंबलडन चैंपियनशिप के ड्रॉ घोषित, जी हां टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट विंबलडन 2026 के ऑफिशियल ड्रॉ आज घोषित कर दिए गए हैं। इस बार कार्लोस अल्कराज को टॉप सीड दी गई है, जबकि महिला सिंगल्स में ईगा स्वियातेक को पहली रैंकिंग मिली है।
इसके

0: साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो
1: इंडियन फैशन का। जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents change today. के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो, तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते आज

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है. मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है. स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं. प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज. रिंग करें प्रकाश मेनन को. फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660.

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन। ए विलेन!
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
3: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
4: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। OMSOG, caring with dignity।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

देर नुजोड़न वाले पोंटे डो एस के लोटो पुल ते होया। ए पुल हाल ही दे दिना विच एडवेंचर दे शुकीना ते सैलानिया लई एक पसंदीदा स्पॉट बन गया सी, पर इस जगह ते सरकार चा किसी अधिकारित संस्था दी कोई निगरानी या सुरक्षा नियम लागू नहीं सन। स्थानक मीडिया रिपोर्टा अनुसार मृतका माफिया एडुआर्डा रोजरिट जी फ्रिटास ने इस खतरनाक बंजी जंप ते उसकी वीडियो शूट करवाउण लई एंट्रे कोडास नाम की एक प्राइवेट कंपनी करीब $290 यानी कि लगभग 24,500 रुपए दिते सन। वह इस वीडियो नू अपनिया यादा विच समेटना चाहती सी। चश्मदीद मुताबिक मुठियार तो पहला तीन होर लोगों ने उथे जंप लगाया से जो सुरक्षित रहे, पर जिवें ही कुड़ी दी वारी आई उथे मौजूद क्रू मैंबर ने सुरक्षा नियमों नू पूरी तरह छिके टंग दिता। क्रू मैंबर मुठियार नू कुदन दा इशारा करन या हेठां तसन तो तकन तो पहला यह चेक करना भूल गए कि उसकी सुरक्षा रस्सी ठीक तरह बनी है या नहीं। जिवें ही मुठियार ने पुल तो हेठा छाल मारी उथे मौजूद लोगों नू तुरंत पता लग गया कि उसके पैरां या शरीर नाल कोई रस्सी जुड़ी हुई नहीं सी। कुड़ी सीधी 35 मीटर यानी कि करीब 115 फुट हेठा जा डिगी। हादसे तो बाद उथे मौजूद कर्मचारियों के हाथ पैर फुल गए। उत्थे मौजूद लोगों ने दस्या कि गलती का एहसास हुंदे ही मुलजम इंस्ट्रक्टर अते स्टाफ उत्थों भज्जण दी फिराक विच सी, पर उन्हां दे भज्जण तों पहलां ही स्थानक पुलिस ने उसनूं घेर लिया। दस्या जा रहा है कि इस मामले विच हुण तक 6 लोगों नूं गिरफ्तार किया जा चुक्या है। ਤਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ bisoni@bisoni.com। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀਓ bisoni 1901 FM। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ
1: ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਏ ਹਾਂ
0: ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਹ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
2: ਬਹੁਤ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ
3: ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
4: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੋਣੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
5: ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ
6: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है इसे हम बिन कॉइन कहते हैं अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें
5: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते
7: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या तो अब स्विच करो सोलर पर प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स घर हो या बिजनेस हम सब के लिए सोलर पैनल्स बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा रे सोलर पावर पावरिंग होम्स पावरिंग

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.

देखो मूवीज की हमेशा गल करते होंगे क्योंकि मैं चाहनी हूं कि जरा हर टाइम है ना बेशक वीकेंड हो बेशक वीकडेज हो जो भी थोड़ा मूड ऑफ हो कुछ स्पैशल करना हो कुछ देखने कंटेंट लभ रहे हो तो मैं थोड़ी हैल्प करा तो अज ही मैं उही काम करूंगी। देखो जेकर थानू भी शार्क वर्गिया सस्पेंस थ्रिलर पसंद आंदियां है ना तो अज मैं थोड़े लिए लैके आई हाँ अजिहा ही शार्क मूवीज की लिस्ट जिन्हां तुसी घर बैठे हो ओटीटी ते देख सकते हो इंजॉय कर सकते हैं उन्हां नूं ते जिस विच सस्पेंस थ्रिलर दे नाल नाल मिस्ट्री भी बहुत वधिया हैगी है सच्चियां घटनावां ते आधारित भी हैगियां ने कुछ कु सारियां ने कुछ कु ते दसां तुहानूं इन्हां बारे दसदी आं पर पहला सुनो एक गीत।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.

जी जी अनु जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 FM ते जी आर चे संदेश अलग दिन आल से बने हुए इस लिस्ट दे विच यानी कि शार्क मूवीज दी लिस्ट दे विच सब तो पहला नाम जेड़ी फिल्म दा आंदा हैगा है वो है जी थ्रैश। थ्रैश हैगी है जेड़ी ए फिल्म ना समंदर किनारे बसे एक अजिहे शहर की कहानी है जिथे भयंकर तूफान आंदा हैगा जिस दे बारे तुसी सोच भी नहीं सकते। हड़ आ जाता है, हड़ के पानी दे नाल शहर के अंदर खूंखार शार्क भी वड़ जांदियां हैगियां ने। इस तो बाद शुरू हुंदा है असल कहानी, अगल असल रोमांच की कहानी। तो जिवें तुहानू हुणे सारा कुछ दसता तो तुहाडा सस्पेंस हैगा जिहड़ा बिल्कुल खत्म हो जाऊगा। इस लई तुसीं थ्रैश जरूर देखो। हुण तुसीं सोच होंगे कि इहनूं असीं कित्थे देखिए, तो इस मूवी नूं तुसीं यानी कि थ्रैश नूं तुसीं देख सकते हैं क्यों नैटफ्लिक्स ते।

0: जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT, यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाएं।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सन वन एम ते जी आर जी संदेश अलग दिन आप बने हुए। अगला नाम केड़ा है इस लिस्ट दे विच? ता अगला नाम है जी द रीफ। आई सी 2010 दे विच ता बहुत शानदार फिल्म है। कहानी मैं तुहानू पहला दस दिनी है। ता कहानी दी जे गल करिए ना तो आस्ट्रेलिया दे समुंदर विच एक किश्ती है जिहड़ी पलटन तों बाद ना दोस्तां दा एक ग्रुप गहरे पानी विच फस जांदा है। उन्हां नूं किनारे तक पहुंचण दे लई तैरना पैंदा है पर एक विशाल शार्क उन्हां दा पिछा शुरू कर दिंदी है। ते ए फिल्म इसे दे इर्द गिर्द घूमदी है किवें शार्क तों बचदे ने, कौन बचता है कौन नहीं बचता, यह सब कुछ तुहानू इस फिल्म दे विच देखण नूं मिलूगा। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। इस नूं तुसीं नैटफलिक्स ते नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इसलिए तुहानू देखना पैना है एमाजोन प्राइम वीडियो।

जी आनु जी जी आनु एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसारण वंसरो वाले एम पी जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए। अगला नाम है जी ओपन वाटर 2003 दे विच आई सी। ए सच्ची घटना ते आधारित फिल्म है कि है एक क्या हाँ जानता है गा जी। मैं तुहानू स्टार्टिंग दे विच कहा सी ना कि कुछ कु फिल्मां सच्चियां घटनावां ते आधारित है ते उहनां दे विचों एक है। तां हुण जे मैं कहानी दी गल करां ना तां कहानी एक कपल दी है कि है। एक कपल ना

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: न तेरे वर्गा आशिक वेख्या, न तेरे वर्गी आशकी।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंसर वन एम ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। इस लिस्ट विच अगला नाम केड़ा है गया था, अगला नाम है गया जी द शैलो। 2016 विच आई सी फिल्म, बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा सोहनी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो इसकी कहानी मैं तुम्हें दस दिनी है। कहानी विच ना एक कुड़ी तट तो कुछ ही दूरी ते बनी एक चट्टान ते फस जाती है। उसके होर किनारे दे विचकार एक विशाल शाक पैरा देरी हुंदी है। एक छोटी जी दूरी नू पार करना एक रोमांच नाल परी कहानी नू जन्म दिंदा हैगा है। ते यही तो इसकी कहानी है कि वह कुड़ी किवें पार करूगी, क्योंकि उत्थे तां शार्क है की है। ये कहानी जो तुसीं देखनी है कि किवें की कुछ होगा, तो इसके लिए थानू नैटफ्लिक्स ते जरूर जाना पैना है। यह हॉलीवुड फिल्म हैगी है, प्राइम वीडियो ते नेटफ्लिक्स दोनों ते तुसी इसनू इंजॉय कर सकते हो।

0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
1: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
5: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
7: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
9: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
8: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
9: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
8: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से।
10: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

सर तुम्हें जा।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448-381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। OMSOG, caring with dignity.
4: Fire ants तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहें अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best विरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इन टू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इन टू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
10: यार, आई एम सो वरीड। Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
9: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
10: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
9: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स। पर लड़की किसी में नहीं मिलती है, ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

बाकी से जो पर सोकर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

सामने बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू

कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है आध्यात्मिक धार्मिक सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेद

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: नमस्ते, अदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे श्रोताओं। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो प्रेसवाणी, जहां पर प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के लिए जानने का सफर। नई सुबह, नई ऊर्जा और ढेर सारी जानकारी के साथ आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। अपनी चाय या कॉफी का कप जरूर उठाइए और शुरू करते हैं आज की ये खूबसूरत सुबह इन प्यारे से गीतों के साथ। लेकिन उससे पहले, हर सुबह हमें दो मौके देती है दोस्तों, कल की गलतियों से सीखने का और आज को बेहतर बनाने का। तो इसीलिए इन मौकों को गवाए ना, साथ में पीजिए ये चाय और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक है जी आप सभी का रेडियो ब्रिस्वानी में। तो आइए इसी के साथ कुछ अपडेट्स जानते हैं देश और दुनिया की। G7 समिट में दुनिया के बड़े नेता वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय शांति को लेकर बातचीत प्रमुख विषय में बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते और क्षेत्रीय तनाव को लेकर चर्चा तेजी से बनी हुई है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेडियो प्रेसवानी में। आप सभी सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन को रेडियो प्रेसवानी में। तो दोस्तों आइए कुछ ऑस्ट्रेलिया के अपडेट्स जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मौसम को लेकर बड़ी खबर आई है। सिडनी में जून के महीने में एक सदी से भी अधिक समय बाद सबसे लंबा गर्म दिनों का दौर रिकॉर्ड किया गया है। जी हाँ, और विशेषज्ञ इसे बदलते जलवायु पैटर्न से जोड़ रहे हैं। वहीं पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग मजबूत हो रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया में होने वाले बड़े एयर एक्सरसाइज जो है वो पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं अगला गीत ओनली ऑन रेडियो प्रेसवानी।

हाँ जी, इसी गीत के साथ एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है जानने के सफर में। आप सभी का ये सफर बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। क्या आपको पता है दोस्तों, हमारा दिमाग जो है लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स से बना होता है। जी हाँ, जो हर सेकंड जो है लाखों संदेश एक दूसरे तक पहुँचाता है। यही हमारे याददाश्त को, हमारी सोच को और हमारी जो भावनाएं हैं उनको कंट्रोल में करते हैं। जी हाँ, बहुत ही नॉलेज वाली बात मैंने आज आप सभी के साथ शेयर की है। वहीं पर दोस्तों एक हेल्दी आप सभी को टिप देना चाहूंगी। सुबह उठकर ना जब हम 5 से 10 मिनट धूप में बैठते हैं, उससे हमारे शरीर में विटामिन डी जरूर मिलता है, जिससे हमारा मूड बहुत ही बेहतर बनता है और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो बहुत अच्छे से एक्टिव होते हैं, जिससे हमारी जो हेल्थ इश्यू है वो कम हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसीलिए हमें नेचुरल तरीके से विटामिन डी जरूर लेनी चाहिए सनलाइट में थोड़ी देर बैठकर। तो आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। वैसे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमेशा हर वक्त हमें मुस्कुराने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों मुस्कुराने से हमारे शरीर में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। इसीलिए दोस्तों आज किसी को एक प्यारी सी मुस्कान देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इसी पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं आज के सफर की प्यारी प्यारी सी शुरुआत एक प्यारे से गीत के साथ। वैसे तो इस सफर की शुरुआत हो ही चुकी है, लेकिन रेडियो ब्रसवानी में हर सफर बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपकी पसंदीदा गानों के साथ और ढेर सारी दिलचस्प बातों के साथ। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रसवानी।

एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कुछ फिल्में की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में हर साल सबसे ज्यादा फिल्में बनाई जाती है। बॉलीवुड के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री भी दुनिया भर में अपनी अलग अलग पहचान जो है वो बना चुकी है। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, जो हम फिल्म देखते हैं और फिल्म के पर्दे पर जो एक्शन सीन हमें बहुत ही बेहतरीन लगते हैं, कुछ ही मिनटों का दिखता है और कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है, लेकिन दोस्तों उसके पीछे कई दिनों की बहुत मेहनत, बहुत ही रिहर्सल और टेक्स जो है वो छिपे होते हैं, क्योंकि वो हमें दिखते नहीं है और उन एक्शन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो एक्शन कुछ मिनट के लिए हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। वहीं पर दोस्तों, कई सुपरहिट गानों की रिकॉर्डिंग्स जो है वो रात के समय हुई है, क्योंकि उस समय का माहौल जो है कलाकारों को ज्यादा फोकस करने में मदद करता था। दिन भर शोर शराबा होता था और रात का समय ऐसा होता था जब रिकॉर्डिंग्स होती थी, यानी कि जब म्यूजिक रिकॉर्ड किया जाता था वो शांति वाला जो टाइम था वो रात का होता था। उस टाइम पे रातों को ही सिंगिंग जो है की जाती थी और रिकॉर्डिंग्स की जाती थी, ताकि उनको सुकून मिले और फोकस उनका बना रहे। तो आइए इसी के साथ हम अपना फोकस बनाते हैं इस गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवानी।

वेलकम बैक है जी रेडियो ब्रिजवाणी में। वैसे दोस्तों आप सभी सुन रहे हैं चाणी का सफर, और ये सफर बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश मेरी रहती है। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों वैसे फिल्मों की तरह भी हमारी जिंदगी होती है। जी हाँ, हमारी जिंदगी में भी हर दिन एक नया सीन होता है, लाइक कॉमेडी, कभी ड्रामा, कभी इमोशन, या फिर कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट्स जो हमें बिल्कुल, कहते हैं ना कि बिल्कुल इमोशनल कर देते हैं। बस कोशिश यही होनी चाहिए कि दोस्तों कहानी कैसे भी हो, बस हम अपनी कहानी के हीरो बने रहे। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों मूड को थोड़ा और खुशनुमा बनाते हैं, क्योंकि संगीत वो जादू है जो बिना कुछ कहे दिल की बात समझा भी देता है और समझ भी लेता है। तो आपके पसंदीदा के गाने यहाँ पे सुनते रहे और मैं आप सभी के गाने जो है यहाँ बजाती रहूंगी। तो इसी के साथ दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाजत, और आप सभी बस जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिजवाणी में। हमेशा आप सभी खुश रहिए और बहुत सारा प्यार आप सभी को रेडियो ब्रिजवाणी की पूरी टीम की तरफ से। हैव अ वंडरफुल वेडनेसडे ब्रिस्बेन, टेक केयर, बाय बाय, सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवाणी। कल फिर हाजिर होंगे आप सभी के साथ, सभी के बीच बहुत सारी बातें और अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन लेके। अभी के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवाणी।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रिजी ब्रिस्वानी 1701। हम आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ईरान डील पर सस्पेंस, विदेश मंत्री ने कहा शांति समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के शीर्ष राजनयिक ने कहा कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने वाले समझौते के तहत इसराइल को लेबनान से भी पीछे हटना होगा। ऐसे में अब उस समझौते को लेकर सवाल उठने लगे हैं जो अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, और क्या इस शर्त पर सहमति हुई तो संघर्ष लंबा खिंच सकता है, इस बात को लेकर भी बयानबाजी चल रही है। यूएनएससी में सुधार को लेकर भारत सख्त, संयुक्त राष्ट्र में पेश किया दस्तावेज को बताया पक्षपातपूर्ण। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने और इसमें बड़े सुधारों को लेकर भारत ने अब तक का सबसे कड़ा और आक्रामक रुख अपनाया है। भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए तैयार किए गए हालिया एलिमेंट्स पेपर की तीखी आलोचना की है। इस मामले में भारत का कहना है कि ये दस्तावेज पक्षपातपूर्ण है, इसमें सदस्य देशों की राय को गलत तरीके से पेश किया गया है और स्थायी सीटों को बढ़ाने के भारी समर्थन के बावजूद इसे जानबूझकर छुपाने की कोशिश की गई है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। भारत बांग्लादेश में नया कूटनीतिक तनाव, ढाका ने भारतीय राजनयिक को किया तलब, एयरपोर्ट पर रोके गए थे पीएम के सलाहकार। भारत और बांग्लादेश के बीच एक बार फिर कूटनीतिक विवाद गर्मा गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के एक वरिष्ठ सलाहकार के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए व्यवहार को लेकर बांग्लादेश सरकार ने कड़ा विरोध जताया है। इस मामले में ढाका में तैनात भारत के उप उच्चायुक्त पवन बधे को देर रात बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय द्वारा तलब किया गया और औपचारिक रूप से अपनी नाराजगी दर्ज कराई गई। भारत में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक, नीट एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। नीट यूजी की दोबारा परीक्षा के मद्देनजर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है। ये परीक्षा 21 जून को होनी है और सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम पर रोक लगाई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 59A के तहत एक निर्देश जारी किया है। इसके तहत भारत में टेलीग्राम प्लेटफॉर्म का एक्सेस एक तय और सीमित समय के लिए 22 जून 2026 तक सीमित कर दिया गया है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता।
1: स्वागत है आप सभी का रेडियो बिजवानी पर। आप सभी का प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। अमिता आपको भी नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते एवरीवन। इट्स अ ब्यूटीफुल वेंसडे मॉर्निंग ऑन द 17th ऑफ जून।
1: इट्स अ ब्यूटीफुल थोड़ा सा ओवरकास्ट है, नो डाउट। जैसे आज कहा गया है कि पार्टली क्लाउडी रहेगा दोस्तों, 15 and 23। टुमारो विल बी 12 and 23। फ्राइडे को कहा गया है 14 and 24, नो रेन। सैटरडे को पॉसिबल शावर्स 15 and 25, 1 millimeter तक होगा। संडे को शावर्स और टू 16 and 22। मंडे को शावर और टू 15 and 23। और ट्यूजडे को मोस्टली सनी 13 and 22 रहेगा। तो ये रहा हमारा ब्रिस्बेन का वेदर। और अभी दोस्तों देखिए, अभी यहाँ पर ब्रिस्बेन में कुछ किसी तरह का वायरस चला हुआ है, सबका स्टफी नोज एंड यू नो ये सब हो रहा है।
2: yep. तो
1: बच कर रहे थोड़ा। हाउ कम यू सीम टू बी वेरी नॉट गेटिंग एनी प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम?
2: आई टुक माय फ्लू शॉट। व्हाट्स द प्रॉब्लम
1: दैट यू नॉट गेटिंग एनी प्रॉब्लम?
2: आई टुक माय फ्लू शॉट इन अप्रैल।
1: एंजेला टुक हिज द अदर डे एंड शी वाज।
2: डिड यू टेक वन?
1: नाह।
2: ओके, well, there you go. I am armed and I am dangerous.
1: Oh, you are armed and dangerous?
2: Yep.
1: Well, you need someone to fight with.
2: Well, who else but you?
1: I don't know. Pacific Motorway, Holland Park West, crash jo northbound hua tha, ye clear ho gaya hai dosto. Aur chalo, Gympie Road, Castledine, वहाँ पर स्टेशनरी व्हीकल है, वन लाइन इज ब्लॉक साउथबाउंड टुवर्ड्स जेम्स साइड। ठीक है,
2: मे आई जस्ट एड
1: द
2: सेंटेनरी वाज क्वाइट बिजी एंड आई थिंक समथिंग हैड हैपेंड अर्लियर ऑन टुवर्ड्स गुडनर साइड, सो दैट वाज क्वाइट क्रेजी। सेम विद कमिंग इनटू फ्रॉम डेरा टू ऑक्सली, यू नो दैट एरिया ऑन द इप्सविच मोटरवे, इट लुक्ड वेरी वेरी बिजी।
1: ओके,
2: सो जस्ट प्लान अहेड. If you're taking that route, mm-hmm. you're going to sit in some traffic. I don't think it would have cleared by now.
1: Okay. अच्छा, आगे बढ़ते हैं और फिजी का कुछ समाचार बता दूं, बताता चलूं।
2: जी,
1: मौसम में सुधार है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों की जो तेज बारिश और हवाओं के बाद अब मौसम धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। ज्यादातर स्कूल्स और गवर्नमेंट जो ऑफिस फिर से खुल गए हैं। कुछ इलाकों में लोगों को अब भी सावधान बरतने की सलाह दी गई है। ठीक है, और इलेक्शन की तैयारी जारी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 2026 जनरल इलेक्शन की तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन को डिले करने की जो अफवाहें थे वो खारिज कर दिए गए हैं। ठीक है, और गन्ना किसानों के लिए महत्वपूर्ण बातचीत, शुगर इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर मीटिंग्स हुई है। गन्ना हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्ट रेट को लेकर चर्चा चल रही है ताकि किसानों को बेहतर सपोर्ट मिल सके। पुलिस में करप्शन पर सख्त रोक। मिनिस्ट्री ऑफ पुलिसिंग ने कहा है कि पुलिस फोर्स में करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए नया पुलिस बेसिस के योजना भी बन रही है। ड्रग और एचआईवी पर चिंता है दोस्तों। हेल्थ और कम्युनिटी लीडर्स ने फिजी में बढ़ते ड्रग अब्यूज और एचआईवी केसेस पर चिंता व्यक्त की है। अवेयरनेस और प्रिवेंशन प्रोग्राम्स को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। एक एडिक्शन जो ऐसा बहुत बुरा चीज है दोस्तों। या स्पोर्ट्स अपडेट, फिजी रग्बी स्टार पचेली योटो नेशनल स्क्वाड में शामिल है और शानदार फॉर्म में है। फिजी फुटबॉल फ्रेटर्निटी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर जितेंद्र सुखु के निधन पर शोक व्यक्त कर रही है। फिजी फैक्ट चुनमन के लिए टीम्स तैयारी में जुटी हुई है। और चलिए दोस्तों आज का विचार सुन लेते हैं, ठीक है। जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों को बहाना नहीं सीखने का मौका समझते हैं, ठीक है। तो वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, सिंपली पुट। चलो गीत सुनते हैं, देवी कम बैक।
2: श्योर,
1: ओके। Thank you.

0: और हमारे कुछ ऐसे लिसनर्स हैं दोस्तों जो चलते हैं सुबह सुबह और फोटो
1: खींच मेरी फोटो
0: और फिर हमारे पास भेजते हैं, तो क्या बताऊं मैं, बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू टू ऑल यू लिसनर्स आउट देयर. नंबर्स आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. और हमारे जो इंटरनेट लिसनर्स हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आवर ऐप इज नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, पीपल आर स्टिल लिसनिंग थ्रू अदर एप्स.
1: यस.
0: सो थैंक यू सो मच. अच्छा लग रहा है देखकर. लेकिन प्लीज, इट्स ओनली +61 4300317 01. पर आप हमारे पास मैसेज कुछ ना कुछ तो भेजे. देखते हैं कौन भेजता है सबसे पहले. ठीक है. इस नंबर पर या व्हाट्सएप पर आप कर सकते हो. How do you join anybody in WhatsApp? Like, suppose I'm in WhatsApp.
1: I think you have to, like, type the name probably, and I think it finds it now to see if that person's on WhatsApp.
0: I've gone. WhatsApp. I used to be so savvy on.
1: No,
0: computers.
1: I used to add it on.
0: I'm really going backwards, man.
1: I think you can add it. You can add it on.
0: Okay. So, आप ढूंढिए मुझे, आप add कर दे मुझे, और आप message भेज सकेंगे हमारे पास, बातचीत कर सकेंगे. अगर आपका है कुछ कहने के लिए

0: ओके, थैंक यू. मैंने थैंक यू बोला है आप सभी को जो इंटरनेट से सुन रहे हैं, लेकिन मैं कैसे कहूँ, मैं जब देखता हूँ तो दिल गदगद होने लगता है. देखो हंगरी से कितना लोग सुनते हैं, लेकिन इंडियंस आर एवरीवेयर, बट सिर्फ इंडियन नहीं, लॉट ऑफ पीपल जो म्यूजिक को पसंद करते हैं. अब जैसे अफगानिस्तान में आप चले जाओ या किसी अफगानिस्तानी से आप मिलो, तो वे हिंदी में बात करेंगे उर्दू में. तो अगर आप पूछेंगे कैसे आप जानते हो, बोलते हैं गाना सुनकर और बॉलीवुड मूवी देखकर हम सीखे हैं.
1: जी,
0: सोचिए आप. सो इसका असर है. देखिए दोस्तों, कभी कभी कुछ चीज ऐसे आ जाते हैं सामने जिसे हम आप तक एकदम पहुंचाना चाहते हैं. ठीक है, अभी देखो एक आया मेरे पास कि जिंदगी में कभी भी अपनी कीमत दूसरों के नजरिया से मत नापना. हीरा अगर मिट्टी में घिर राइट, अगर मिट्टी में भी घिर जाए उसकी जो कीमत कम नहीं होती, इसी तरह आपकी जो वैल्यू है दोस्तों, आपकी वैल्यू भी हालात से नहीं, आपके करेक्टर और मेहनत से तय होती है. ठीक है, तो इन बातों को याद रखें. यू आर वन ऑफ अ काइंड. ठीक है, आपका तरह आप एक इंडिविजुअल हो जो कॉपी नहीं है, यूनिक. यहां तक कि अपना भाई बहन भी नहीं आपकी तरह ना.
1: यूनिक,
0: वी आर ऑल यूनिक. सो डोंट सेल और डोंट फील दैट यू नो यू आर अ स्पेशल पर्सन. ओके, एवरीवन इज स्पेशल. ऑलराइट, चलो.
1: डोंट ट्राई टू बी लाइक एनीबॉडी एल्स,
0: बी योरसेल्फ.
1: यस,
0: राइट, ओके, लाइक वी आर,
1: लाइक वी आर. आई थिंक
0: यू गेट व्हाट यू सी ना. राइट, या ओके. खैर कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है. सेम जूता भी सही है, सब सेम पे है. रियल आई केम इन डिफरेंट पे.
1: डिड यू?
0: या, यू डिड नोटिस. टुडे इज ओके. ऑलराइट,
1: लेट मी लुक.
0: या लुक.
1: ओके, दे मैच.
0: शुड वी टेक अ पिक्चर एंड पुट इट ऑन द वेबसाइट और फेसबुक?
1: पीपल वंडर व्हाट द
0: व्हाट इज गोइंग ऑन विद दिस पीपल.
1: व्हाई आर दे टेकिंग अ फोटो ऑफ देयर शूज?
0: आई नो.
1: Is it that you just put it on in a hurry or absent-mindedly or what happened? Were you in a rush?
0: No. मेरा ध्यान कहीं और रहता है हमेशा.
1: ध्यान किधर है?
0: शायद इसी कारण. Always thinking of what to do, what to, you know.
1: Oh.
0: What to not do.
1: What to not do.
0: Yeah.
1: And that's what
0: not
1: you did.
0: To do.
1: And that's what you did.
0: Yeah, and that's what I did. If that makes any sense.
1: Mm-hmm.
0: Okay, dosto.
1: Makes sense.
0: Yeah. तो चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगर आप कभी कोई फरमाइश है तो please do send it to us. We'll gladly play it, okay? और हमारे बहुत से listeners हैं जो हमेशा सुनते हैं. Give me some names, our listeners that always listen.
1: Oh, me?
0: Yeah.
1: Oh, Premji listens, Vinny listens, Krish listens, Amlaji listens, Parma Bhai listens.
0: Ajay Bhai listens.
1: Ajay Bhai, yes.
0: Yeah. Ashok Bhai up north there, she listens. He loves old songs. I mean, these are the callers that call us.
1: That call, yes.
0: You can come in this list if you start calling us. And Maninder Bhai. Maninder
1: Ji. Yes.
0: Yeah.
1: Rajiv hasn't called in a while. But
0: Rajiv, I was just thinking of Rajiv, you said it. Now, have we got ourselves in
1: trouble.
0: Deep
1: trouble? I think deep.
0: Because
1: deep.
0: We might be forgetting some people. Oh, Ulala. How could you forget Ulala?
1: I did not forget because I got the song here to play.
0: Yeah, Pandit Haranji, chalo ye gana aapke liye.
1: Aapke liye, Pandit Ji.

0: ओके ऑल्सो पटेल सुरेश जी विशाल विशाल आप कहाँ है विशाल आई मेट हिम समवेयर ओ ही कॉल्ड मी विशाल कॉल्ड मी या यस यस यस और राधा द नेम्स आर कमिंग स्लोली
1: स्लोली स्लोली कॉल एंड रिक्वेस्ट या
0: लेकिन रिक्वेस्ट आप लोग बहुत कम करते हैं व्हाई आई वांट टू नो व्हाई सुनते हैं आप सब लेकिन रिक्वेस्ट तो मेबी वी आर प्लेइंग द राइट सॉन्ग्स आई डोंट नो
1: मेबी ओके इट्स 7:32 सो हैप्पी बर्थडे इफ यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे टुडे टुडे इज द 17th ऑफ जून एंड हैप्पी एनिवर्सरी इफ यू सेलिब्रेटिंग योर एनिवर्सरी वी होप यू हैव एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल डे बिकॉज आई वाज थिंकिंग ऑफ राधा आई थॉट
0: या
1: दिस वन्स फॉर यू राधा
0: या

0: और देखिए दोस्तों, आई डोंट नो व्हाई यूएस और ईरान अब आता है इसमें. करने वाले तो इसराइल थे, क्या नाम उसका, नेतन्याहू, वो इनको आगे करके अपने पीछे चला गया. इसको पागल बना दिया. एनीवे, यूएस ईरान तनाव में कमी. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हुआ है जिसे हाल ही के संघर्ष को खत्म करने और स्ट्रेट ऑफ होमर्स को फिर से खोलने की कोशिश की जा रही है. ये रूट दुनिया के तेल व्यापार में बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है. और फीफा वर्ल्ड कप 2026 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज जोर शोर से चल रहा है. कल कई बड़े मैचेस आज खेले जा रहे हैं जिसमें इंग्लैंड और क्रोएशिया का मुकाबला भी शामिल है. कुछ चौंकाने वाली रिजल्ट भी देखने को मिले हैं, जैसे स्पेन का केप वेडे के साथ ड्रॉ स्पेन. ऑलराइट. और यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना हुआ है. कई देश शांति वार्ता और समझौता की मांग कर रहे हैं, तो ये तो चल रहा है. और आप जानते हैं दोस्तों, चाइना के कुछ इलाकों में एक 6.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया गया है. अथॉरिटीज नुकसान का अंदाज लगा रही है और रिजल्ट रेस्क्यू टीम्स तैनात की गई है. तो चलिए, कुछ पता बाद में आएगा. हाउ बैड इट वाज, ठीक है. ओके, व्हाट्स नेक्स्ट यू प्लेइंग? आई हैवंट स्टार्टेड येट.
1: लकी
0: छोटा हूं. आप चाहते हैं कि मैं भी कुछ गाना बजाऊं कि सिर्फ जो बज रहा है वही आप सुनना चाहें? Come on,
1: okay,
0: let me
1: this
0: know.
1: Is a remake of an old song.
0: Okay.
1: I just heard a tiny bit of it yesterday and I thought, oh, I really want to play this song. Okay. Remake, remember, okay?
0: Okay.
1: From an old

जी हाँ, किसी ने कहा है कि फिलोरी इज लाइक पकोड़ा। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत कर रहे हैं। और ये गाना गाया है बाबला और कंचन, जब इनका चर्चा किए हैं आपसे, तो चलो सुन लेते हैं इस गीत को।

0: सचमुच में दूल्हा का मैया बहुत खराब है. The way she described it in the song, wow. खैर चलो दोस्तों, रेडियो मिज़बानी सुन रहे हैं और इस समय कोई 12 मिनट रह गया है 8 बजने में और हम आपके साथ रहेंगे 9 बजे तक. फिर 9 बजे आप सताक्षी के साथ हो जाएंगे, 11 बजे से भूलना मत आप संदेश के साथ, और 3 बजे से आप दिव्या के साथ. तो कार्यक्रम जरूर सुनते रहे दोस्तों आप.
1: ओके, आई वांट टू प्ले दिस, वाज वेरी पॉपुलर रिसेंटली एंड देन काइंड ऑफ डाइड डाउन.

0: और अभी कुछ ही देर में दोस्तों हम कुछ पुराने गीत भी लेकर आएंगे। हम जो हमारे पुराने गीत के जो आशिक लोग हैं आपको नाराज नहीं करेंगे हम थोड़ी देर में, ठीक है? आप टिके रहो हमारे साथ और होपफुली कुछ लोग हैं जो ऐसे गीत पसंद करते हैं, शायद कुछ लोग थोड़ा सीरियस होंगे, सीरियस गाना चाहते होंगे। सीरियस गाना होता है
1: सीरियस? Why do we have to be serious? No, hang on. Why do we have to be serious every day?
0: हम काम तो serious नहीं रहते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, come on, be serious. Well, no, that's not in my books, though.
1: No, you be serious when you need to be serious.
0: Because I'm on a holiday. We are all on a holiday.
1: We don't need to be serious today.
0: बहुत seriously
1: नहीं।
0: अच्छा हंसना बहुत जरूरी है। जब आप हंसेंगे दोस्तों आपका अंदर सब अच्छा फील करोगे और जिसके सामने आप हंस रहे हैं वे भी बड़े खुश रहेंगे।
1: ऑफ कोर्स
0: इट्स वेरी हेल्थी थिंग टू डू।

0: और दोस्तों अगला जो गाना है ये भी एक फन फिल्ड सॉन्ग है, फुल ऑन फन और डांस नंबर है यारा अमिता। इसमें जो गोविंदा है ना अपने टिपिकल एनर्जेटिक स्टाइल में नजर आते हैं इस मूवी में अगर आप देखेंगे, और गाने में भोजपुरी फोक का टच है थोड़ा इसमें, अगर आप अच्छी तरह से सुनेंगे यू फाइंड दैट भोजपुरी टच इन दिस सॉन्ग। कैची बीट्स है और वहीं मस्त गोविंदा वाला एंटरटेनमेंट जो 90s और एली 2000 की पहचान था। और कौन सा गीत मैं बजाने जा रहा हूँ दोस्तों, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, ओके,
1: One of millions
0: of song. ठीक है, और I know Amita, you love this song too.
2: घड़ी

0: जी हाँ, मटक मटक चले ऐसे छोकरिया, बाप रे बाप, सरक सरक जाए तन से चुनरिया। क्या लिरिक्स है भाई, इसमें सभी लिरिक्स बहुत प्यारे हैं। तो चले, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। एक नॉनसेंस सॉन्ग है,
1: नॉनसेंसिकल,
0: कभी कभी अच्छा लगता है जी।
1: Yeah, it does.
0: आज हमने थोड़ा नॉनसेंस का पटारा खोला हुआ, उसमें से गीत निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
1: नाउ आई जस्ट वांट टू से दिस इज लाइक supposedly a remake of that song.
0: Okay, all right. Okay. Okay. Oh, really?
1: Yeah, kind of.
0: Achcha.
1: It's from Sunny Sansari ki Tulsi Kumari.

0: देखिए दोस्तों, हम बचपन से जो मून है ना, चंद्रमा को इतना बड़ा देखते आए हैं कि ऐसे लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया से कई गुना बड़ा होगा। लेकिन हकीकत में रियली में ऑस्ट्रेलिया की जो चौड़ाई है मून के डायमीटर से भी ज्यादा है।
1: ओह
0: या जी हाँ, कभी कभी जो चीज बड़ी दिखती है दोस्तों बड़ी नहीं होती है। ओके, सो वी आर वाइडर, ऑस्ट्रेलिया इज वाइडर देन द
1: ब्यूटीफुल चंद्रमा।
0: एक्चुअली इट्स आई थिंक द मून इज अबाउट 3,474 एंड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज अबाउट 4,000 किलोमीटर।
1: यस, सो We were talking about this once, remember? Yeah. Recently. Not recently, well, a couple months ago.
0: कैसे बना होगा ना इतना बड़ा, इधर से उधर, फिर नॉर्थ से साउथ, ओह माय गॉड, मिलियंस बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स। हां, खैर चलो।
1: ओके, ऑन अ डिप्रेसिंग नोट, आई जस्ट रिमेंबर्ड
0: व्हाट हैपेंड।
1: द रेट्स आर गोना गो अप। यस, आई थिंक, बट वी लकी इन ब्रिस्बेन, इन go up as high as everyone else in Queensland, if that's some consolation. Yep, but it's going up again.
0: And the rates are going up.
1: Again. Yes.
0: Why
1: that is residential.
0: Any excuse?
1: Hang on. Residential, they said. Maybe not commercial, maybe residential only.
0: Really?
1: I think. That's what I said.
0: So why are the rates going up? They give us all this green. They give us a green bin, so we can fill it up and then can use that, right? But that comes at a cost. Now to service that green, to pick it up and all that—that's obviously some of the rate goes into that, right?
1: No, but I think the green bin.
0: Yeah.
1: We long ago we had to decide whether we wanted it, right?
0: Yeah, but
1: and
0: nice,
1: we
0: yeah.
1: opted it. For now, I think, recently they just gave everyone that didn't have one.
0: I mean, that cost money.
1: Yes, of course, it
0: does. To make it and to save.

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
3: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: और चलिए दोस्तों, अगला जो गाना है इसे आशा भोसले ने गाया है और राजेश रोशन, यू नो राजेश रोशन आल्सो यूज्ड टू गिव म्यूजिक, और ये गाना गाया गया था रेखा के लिए, ठीक है? ये गाना 80s का जो डिस्को ईरा था ना, ये उसको याद दिलाता है, और रेखा जी का स्टाइल जो है और आशा भोसले जी की जो आवाज है ना, शी इज गॉट अ कैबरे टाइप ऑफ आवाज, और वो जादू वाला जो चार्म होता है ना, जिसने हर पार्टी को मैजिक बना दिया था, जानते कौन से गीत है? यू नो देयर
6: मस्ट बी समथिंग विद जादू।
5: नो, इट्स दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। यस, जब छाए।

0: जी हाँ दोस्तों, कभी मैं दर्द जगाती हूँ, कभी मैं जख्म मिटाती हूँ, हाँ कभी मैं राज छुपाती हूँ, कभी खुद राज बन जाती हूँ। क्या इसमें लिरिक्स भाई, सोचने वाली बात है। चलो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा। और एक बार फिर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, रेडियो मिज़बानी आप सुन रहे हैं। और याद दिलाता हूं दोस्तों, सुबह सुबह 5 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है सताक्षी के साथ, फिर चांदनी के साथ आप हो जाते हैं और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों। तो कार्यक्रम चलता रहता है, इसी तरह सुनते रहिए। फिर इसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद में आप इट हैपन्स आप सुनेंगे सताक्षी के साथ, और फिर 11 बजे से संदेश के साथ अपना पंजाबी प्रोग्राम सुनेंगे, और फिर 3 बजे से, जी हाँ 3 बजे से आप निविया के साथ हो जाएंगे। तो बहुत से खबर लेकर निविया भी आती है और करंट न्यूज वगैरह देती रहती है ऑनलाइन, तो लाइव रहता है दोस्तों, आप उससे बातचीत भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला जो गीत यू आर प्लेइंग,
1: आई एम प्लेइंग, हियर वी गो।

0: और अगला जो गीत चुना हूं मैं, एक ऐसी फिल्म कुदरत से, कुदरत अगर आप नहीं देखा तो देख लो, लेकिन चलो कुदरत एक ऐसी मूवी है दोस्तों, जहां पर एक लड़की अपने जो पिछली जन्म की यादें ठीक है आने लगती है, यानी रीइंकार्नेटेड होगी शायद, उसे पता चलता है कि उसका जो पिछला जन्म में उसका क्या बोलते हैं मैदा हुआ था ठीक है, और वो उसी जगह वापस जाती है जहाँ सब कुछ हुआ था ठीक है। धीरे धीरे राज और इसका जो सच सामने आता है, इसमें राजकुमार और विनोद खन्ना था मेरे ख्याल से, और कौन था, वाज
1: हेमा मालिनी
0: वाज द मेन कैरेक्टर आई थिंक वन, एंड देन आई थिंक इसमें क्या नाम उसका
1: सुनील दत्त, नो नॉट सुनील, व्हाट्स हिज नेम,
0: विनोद खन्ना वाज देयर,
1: आर यू श्योर, नो
0: राजकुमार वाज द कल्प्रिट,
1: राजकुमार
0: या
1: वाज इट,
0: yeah, and I think
1: wasn't Rajesh Khanna in there? No,
0: Rajesh Khanna was in there.
1: Was
0: too.
1: In there?
0: I'm pretty sure he was there.
1: Yeah, I think they. Though I can remember yeah. Hema Malini and
0: yeah,
1: Rajesh
0: Hema Malini,
1: Khanna.
0: Rajesh Khanna was there, Vinod Khanna was there, and Rajkumar was there. Okay. कौन सा गाना दोस्तों, चलो सुनते हैं।

0: छोड़ो सनम, और कुछ देर में चलो अब हम आपको छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और चाहते ही तो नहीं है लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि और भी प्रॉब्लम्स है। कल तो हम आएंगे।
1: Yes, so with this, I think we will say namaste to all of you. Goodbye, take care, have a beautiful day, and we will see you all tomorrow.
0: Keep safe and keep smiling.
1: Yes.
0: Okay, it's good for your health.
1: Yep.
0: And it's also good for the other person. Okay?
1: Namaste.
0: Chalo.

लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

गुड मॉर्निंग का एक और खास अंदाज और सताक्षी का साथ आज एक बार फिर से है इस ताजा तरीन सुबह में दोस्तों आपके साथ। जी हाँ, इस सफर में आज एक बार फिर से हूँ मैं आपके साथ और लेकर आई हूँ जिंदगी से जुड़ी कुछ खास और हसीन बातें आज आपके लिए। सो आज बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ बांटनी है, शेयर करनी है। उन पर आज के दिन की शुरुआत करनी है। आपका ब्रेकफास्ट शो है, जो सुबह बातें होती है ना हमारे ब्रेकफास्ट पर अपनों के साथ हमारी, वो पूरे दिन हमारे जहन में रहती हैं और पूरे दिन हमारी एनर्जी से हमें भरा रखती हैं। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की तरह ही होती हैं ये बातें। तो ये बातें आपके साथ जरूर होंगी आगे इट हैपेंस में, सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रसारणी पर आपकी अपनी सताक्षी के साथ। लेकिन फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रसारणी, मुझे सुनते रहिए और सुनते रहिए इट हैपेंस।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर, आपके साथ है सताक्षी। और इसके पहले दोस्तों हम आगे बढ़े अपने सफर में उनके लिए जिनके लिए आज का दिन स्पेशल है, तो उनके लिए हम विशेज लेकर आए हैं ढेर सारी, तो उनको पहले विश कर देते हैं, राइट। सो जिनका आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे भाई, स्पेशल दिन है आज आपके लिए। इनफैक्ट आज आप ही बहुत स्पेशल है, बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन आपको। और यूं ही मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और जिंदगी का हर दिन जन्मदिन की तरह ही बहुत खास हो आपके लिए। जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी, उन सबको शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। देखिए वेडिंग एनिवर्सरी हर साल आती है, लेकिन उस वेडिंग एनिवर्सरी के जो 365 दिन होते हैं, यानी 364 दिन, 65वें दिन तो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है, 364 दिन जो होते हैं ना दोस्तों, वो सेम नहीं रहते, जिंदगी के उतार चढ़ाव से भरे रहते हैं। तो उन उतार चढ़ाव में आप एक दूसरे

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ।

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. इट हैपेंस. सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रसारणी 1701 एम पर. हमारी कभी कभी ऐसी आदत पड़ जाती है, कुछ लोगों को तो मैंने देखा है, उनकी इतनी बुरी आदत कहूंगी, भाई बुरी ही कहूंगी मैं से, कि वो अपनी हर चीज को, हर बात को लोगों के साथ शेयर करते हैं. ऐसा नहीं है कि वो लोग बुरे हैं, बल्कि उनकी ये आदत जो है, ये ओवर शेयरिंग की आदत जो है, ये एक बुरी आदत हो जाती है. जब आप एक सामने वाले इंसान के आगे खुली किताब बन जाते हैं ना, तो उसे लगता है कि यार ये बंदा तो मतलब सब कुछ तो मुझे पता है इसके बारे में, ऐसा क्या है जो मुझे इसके बारे में नहीं पता. और ऐसा सबको लगने लगता है. आप बहुत साफ दिल से, बहुत प्यार से अपनी चीजें दूसरे के आगे बताते हैं, उसे शेयर करते हैं, बट उसकी नीयत भी वैसी हो, ये जरूरी तो नहीं है. इसलिए वो जो ओवर शेयरिंग की आदत है ना, कि कोई भी बात हुई अच्छी बुरी जाकर सबसे कह दी, ये एक बहुत सही आदत नहीं है. और इसे चेंज कर देंगे जितनी जल्दी आप, आपके लिए उतना बढ़िया है. वरना लोग ना आपको कुछ समझेंगे ही नहीं. थोड़ी मिस्ट्री जो है वो पर्सनालिटी में बहुत जरूरी होती है. आप सोचिए ना, अगर कोई मिस्टीरियस इंसान है तो आप भी उस पर फोकस करते हैं ना, यार ये हंसता क्यों नहीं है, यार ये ज्यादा बात क्यों नहीं करता है. अच्छा लगता है ना, मतलब उसके बारे में जानना. लेकिन अगर एक इंसान के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, तो क्या आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं? नहीं. ठीक वैसा ही लोगों के साथ भी है आपके लिए. तो ओवर शेयरिंग की आदत को कम कीजिए. सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस. आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701.

कई बार लोग एक रिश्ते में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, परेशानी की वजह ज्यादा कुछ नहीं कि सामने वाला उनके लिए वो नहीं करता जो वो करते हैं, वो अवेलेबल नहीं रहता, वो इमोशनली उनसे जुड़ता नहीं है, और इसकी वजह भी कहीं ना कहीं आप ही होते हैं। कई बार हम लोगों के पीछे इतना ज्यादा भागते हैं ना कि लोग हमसे भागने लगते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये बंदा कहाँ ही जाएगा भाग के, क्योंकि हमने उन्हें हमेशा ये शो ऑफ किया है, ये दिखाने की कोशिश की है कि भाई तुम्हारे अलावा तो मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, अगर तुम मेरी जिंदगी से चले गए तो फिर मेरी तो दुनिया रुक जाएगी। और सामने वाले को भी ये फील होता है कि भाई मैं ही तो इसकी दुनिया हूं, मैं क्यों डरूं इसको खोने से। तो आपको खोने का जो डर है जब आप एक इंसान के पीछे भागते रहते हैं तो वो डर सामने वाले में खत्म हो जाता है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमेशा सामने वाले के लिए अवेलेबल ना रहें और उसे ये ना दिखाएं कि भाई आपके अलावा तो हमारी जिंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है, है ना। ये फिर आप पर बहुत भारी पड़ता है। एक और ट्रैक सदाक्षी के साथ, और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रेस वाणी पर।

0: बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पे।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
10: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
9: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
10: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
9: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
11: 0400-234-235. पर हम आ गए हैं गानों की हैट्रिक में। जी हाँ, गानों की हैट्रिक का ये एक और बेहतरीन सफर इट हैपेंस में लेकर आई हूँ आपके लिए। तो चलिए एंजॉय कीजिए आज के तीन बैक टू बैक ट्रैक्स। ये पहला ट्रैक है अभी आपके लिए।

इट हैपेंस से सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM पर, आपके साथ है सताक्षी। इट हैपेंस में ये अगला ट्रैक खास आपके लिए है, एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए मेरे साथ आपका अपना ये ब्रेकफास्ट शो सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्बेन पर।

गानों की हैट्रिक इस वक्त आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ और इट हैपेंस में ये सेगमेंट आप मेरे साथ एंजॉय करते हैं, हर रोज करते हैं। आज भी गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक आपको सुनवाने जा रही हूँ। एंजॉय कीजिए इसे एंड सुनते रहिए सताक्षी के साथ। जी हाँ, रेडियो ब्रिस्वानी पर इट हैपेंस। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

रिश्ते निभाने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की बदतमीजी को बर्दाश्त कर लें। लड़कियों के साथ खासकर मैंने ये चीज देखी है, इनफैक्ट आजकल तो बॉयज के साथ भी, एक रिलेशनशिप में जब आप हैं, ये दोस्ती यारी में भी बहुत आजकल बड़ा कॉमन है कि दोस्ती का मतलब हम किसी को कुछ भी कह दें, ये बहुत गलत चीज है। मैंने शाहरुख खान की एक इंटरव्यू में एक बात सुनी थी और वो आज यहाँ पर इंटरप्रेट करना चाहूंगी। शाहरुख खान का कहना है कि काजोल को भी, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड है, काजोल को भी वो ए इधर आ ऐसे करके नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर रिश्ते की कुछ लिमिट्स होती हैं और दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से किसी भी तरह से बात कर सकते हैं। तो आजकल जो यंगस्टर्स हैं खासकर, वो अपने दोस्तों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनकी ना तो कोई इज्जत है, ना कोई मतलब सामने वाला उन्हें जानता है, ना लोगों के सामने उन्हें कोई फर्क पड़ता है। तो भाई देखिए, हर रिश्ते की कुछ अहमियत होती है, कुछ वैल्यूज होती हैं और कुछ मर्यादा होती है। और दोस्ती के रिश्ते में, या अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो आपको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है और जो बाउंड्री है ना उसे क्रॉस नहीं करना है। तो जैसे कोई वो बाउंड्री क्रॉस करता है, चाहे आपका जितना बेस्ट फ्रेंड हो या कितना क्लोज टू हार्ट हो, उसे वहीं पर रोक देना जरूरी है। पहली बार को ही आखिरी बार बना देंगे तो आपके लिए वो रिश्ता भी लंबा चलेगा और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बरकरार रहेगी। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

इट हैपेंस। जी हाँ, आपके ब्रेकफास्ट शो को आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। कई बार हम सफाई के पुतले बन जाते हैं, हर बात में सफाई, हर बात में क्लेरिफिकेशन। यार ये क्या ही बात है। हाँ ठीक है कि जिसको आप ये क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं वो बंदा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो रिश्ता आपके लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर आपसे किसी को कुछ पूछना होगा, कुछ और जानना होगा, तो वो खुद आपसे बात करेगा ना। आप क्यों हर बात का क्लेरिफिकेशन देने बैठ जाते हैं? बिना सामने वाले के ठीक से पूछे भी आप उसे जस्टिफाई करने लगते हैं, आप उसे क्लेरिफाई करने लगते हैं, आप उसे बताने लगते हैं, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, तो ऐसे हुआ था। क्यों भाई, क्या जरूरत है? हर बात में अगर आप क्लेरिफिकेशन देंगे, सफाई देंगे, तो सामने वाले को आदत पड़ जाएगी आपसे सवाल करने की, और फिर हर छोटी छोटी बात पे वो सवालों का सिलसिला जब शुरू होगा तो आप खुद उससे इरिटेट होने लगते हैं, है ना। इसलिए सफाई उतनी दीजिए जितनी जरूरी है, और जरूरी नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है देने की। और हाँ, अगर किसी को कुछ जानना है, कुछ पूछना है, उसके मन में कोई डाउट है, तो उसे खुद आपसे क्लियर करने दीजिए, बिना क्लियर किए सफाई मत दीजिए। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।